ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावर चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की दूसरी तिथि। तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.9

0: मेगाहर्ट्ज पर प्रातः 6 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार।

0: Geschichte Zimmertour.
1: मेरी 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है गुण का विकास। वाचक स्वर श्री अगरचंद नाहटा का है।
2: संसार में प्राय प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह समस्या उपस्थित है कि वह अपने जीवन को उन्नत कैसे करे। उसे अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष नहीं होता। अपनी ओर से वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता रहता है, पर उसमें सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। इसका मुख्य उपाय यह है कि इस तरह में चिंतन करने की जरूरत है। हमें सबसे बड़ा दुर्गुण है परदोष दर्शन। हम दूसरों के छोटे छोटे दोषों को बड़ा बनाकर या बताकर प्रचार करते रहते हैं, पर उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि होना उससे उल्टा चाहिए। दोष तो अपने देखने चाहिए और गुण दूसरों के। दूसरों के दोष देखने व निंदा करने से हमारे में भी दोष पनपने लगेंगे, और दूसरों के गुण चाहे छोटे ही हों उनको बड़ा मानकर हम अपनाने से हमारे में गुणों का विकास होगा। गुणों के विकास का सरल उपाय यह है कि जिन व्यक्तियों में गुणों का विकास हुआ है उनमें उन गुणों के प्राप्त करने के कारणों को खोजें, साथ में अपने अंदर कौन सी ऐसी कमियाँ हैं इस बात का भी पता लगाएं। जिस साधक कारणों को हमें अपनाएं और बाधक कारणों को परित्याग करें। अपने में आत्मविश्वास जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धियों के लिए मनोबल को बढ़ाना होगा, बिखरी हुई शक्ति को बटोर कर एकत्रित करना होगा। मनुष्य मात्र भूलों का भंडार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा की हुई भूलों का अवलोकन करते रहना आवश्यक है। निरंतर सावधानी रखने से भूल करने से स्वभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बहुत सी भूलें तो अज्ञानता और अन्य मनस्कता के कारण ही होती हैं, अतः अज्ञानता को दूर करने के लिए अपने मन को इधर उधर की बातों से हटाकर एक स्थान पर एकत्रित करना चाहिए। भूलें क्रमशः कम होती जाएगी और कार्य में सफलता मिलती जाएगी। अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क करके समय समय पर मार्गदर्शन लेना भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक दो ऐसे शुभचिंतक तथा विचारशील व्यक्तियों को निश्चित कर लेना चाहिए, जो जब भी मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। इसलिए प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है और कहा गया है कि गुरु के बिना गति नहीं, ज्ञान नहीं। गुणी व्यक्तियों का आदर करना, गुण ग्रहण की भावना रखना गुण प्रकटन या प्राप्ति का सच्चा व सहज उपाय है। हमने दोषों कमियों को प्रयत्नपूर्वक दूर करिए। स्वाध्याय व सत्संग सत्कार्य में पुरुषार्थ ही उन्नत बनने का राजमार्ग है।
1: अभी आप सुन रहे थे गुण का विकास विषय पर आज का विचार। वाचक स्वर था श्री अगरचंद नाहटा का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम आइए पहला भजन सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

जो सुना चंदन दास का गाया हुआ ये भजन, अगला भक्ति गीत सुनिए सोनाली के स्वर में।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रही हैं। मीडियम 215.905 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर प्रातः के ठीक 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 268 से दोहा संख्या 270 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन। मुख्य गायन स्वर है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10:30 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार होंगे पंडित कुमार बोस।

रात 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां। और रात 8 बजे संसद समीक्षा आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर सुगम संगीत फिल्म संगीत रात 8:15 और रात 9:30 अलावा इसके शाम 6:05 पर। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30। बहने सुनेंगे महिला जगत कार्यक्रम दिन में 1:05 पर और युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुन सकते हैं हमारे केंद्र से शाम 5:05 पर।

हमारी सभा में सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे श्रीमती पूर्णिमा मित्रा की वार्ता, माफ कीजिएगा पूर्णिमा मित्रा की कहानी नया सूरज। समय रहेगा सुबह 8:30, कार्यक्रम होगा सौरभ। गांधी चर्चा कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:15 पर। आज का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा, प्रस्तुति श्री अशोक और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1335वां अंक आज आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और सुबह 10 फिल्म संगीत सुगम संगीत दिन में 12:10 पर।

0: तकनीक का उपयोग।
1: किसान भैया राम राम। खेती बाड़ी में नवाचार और आधुनिक तकनीक का प्रयोग ज्या ज्या बढ़तो रहे बीएमिया खेती में कई सुविधाओं बढ़ती रहे बिशु उपज रमने निखार रहे और किसान भैरी आमदनी रमने भी सुधार रहे और जनसंख्या बढ़ने रहे सागे सागे जमीन भड़को नहीं रही है। जमीन बीती है तो जितनी जमीन अपारखाने उपलब्ध है बिरोही अपर अगर सही तरीके से उपयोग करा जल्द ही पैदावार में बढ़ोतरी हो सके और बढ़ती जनसंख्या की मांग जकी है वह पूरी हो सके। इस वास्ते आधुनिक तकनीकारो उपयोग बहुत जरूरी हो जावे और आज इन बारे में ही जानकारी करा इस बारे में बात करा कि खेत में आधुनिक तकनीक ने क्या उपयोग कर सका। खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीक रो उपयोग बहुत ही बड़े क्षेत्र में होने लग्यो है और किसान जको है कई तरीका रे माध्यम से नई नई तकनीकी अपनाने लग्यो है। उत्पादन लागत कम करने में भी जकी तकनीक है मदद कर रही है। प्रौद्योगिकी के साथ साथ खेती बाड़ी रो काम ने आसान करी है और उपज में बढ़ोतरी करी है। अब आप प्रौद्योगिकी अपन हर जगह दिखे की हर जगह ट्रैक्टर ले ली है। पानी जगह है खांदर मत लाणो पड़तो हर टूतो बिरबाद रे मैंने और बिरबाद रे मैंने आजकल सिंचाई रा साधन आ गया है और अब सिंचाई रे मैंने भी है वैज्ञानिक आपरी खोज करी है तो पतो चलियो के बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी है और ड्रिप सिंचाई पद्धति है ए भी उपयोगी है। समय रे साथ है जको है आधुनिकता आती गई। खेत्र मैंने अगर जीव जिनवर या जीवाणु लागता तो मेरी भी खोज हुई रासायनिक पदार्थ है बेर माध्यम से जीवाणु ने खत्म करी जो बिरबाद रे मैंने समय बदलियो तो लोगों ने पतो चलियो के भाई रासायनिक कीटनाशक जका इस्तेमाल करा विश्व खेत ने नुकसान हुआ तो पाछी दुनिया जगी है प्राकृतिक खेती रखनी लौट रही है। अब प्राकृतिक तरीका में बड़े नई खोज हुई और बीरे कारण ही आज ऑर्गेनिक खेती लोग कर पा रहा है और ऑर्गेनिक खेती में भी जीवाणुओं से मुकाबलो कर रहा है। तो ए जकी तकनीक है ए सहूलियत वास्ते है। इसी तकनीक पर और आप बात करा आज ये एक तकनीक है ड्रोन तकनीक। वो खेत ने मापने वास्ते सर्वेक्षण करने और फसल की निगरानी करने वास्ते बहुत ही उपयोगी है और इरो उपयोग तो कीटनाशक रे छिड़काव में भी लोग काम में लेने लग गया। कीटनाशक अगर ड्रोन छिड़के तो एक तो बिर नाक रे में चढ़ने की संभावना रहे कोनी और कोई भी इंसान ने जो को है दुर्घटना की संभावना कम हो जाए। नई तकनीक जीपीएस है अभी खेत में इस्तेमाल कर रहा है और इरो उपयोग जो को है खेतरी सीमा पतो लगाने वास्ते इर अलावा उर्वरक कीटनाशक और इन सटीक रूप से ध्यान करने वास्ते भी उपयोगी तकनीक है जीपीएस तकनीक। इस फसल रहे और कीटनाशक की बर्बादी कम हुए और कार्य क्षमता बढ़ सके। सैटेलाइट इमेजरी रो प्रयोग जो को है वो मौसम री भविष्यवाणी करने फसल री निगरानी करने और फसल रो विश्लेषण करने में बहुत ही बढ़ चुकी है। किसान ने सिंचाई फसल रो पैटर्न जो को है इस संबंध में निर्णय लेने में भी सैटेलाइट इमेजरी मदद करे। आजकल कई काम तो जो को है ऑटोमेटिक मशीन होने लग गया जगह स्वचालित मशीन आ गया जिया की बुआई वास्ते मशीन आ गई रोपाई वास्ते मशीन आ गई कटाई वास्ते मशीन आ गई थ्रेसिंग जगह होने लग गया है। ऐ सगली जकी मशीन है इंसान रो काम सरल कर दियो ना सिर्फ शारीरिक श्रम में इसको कमी आई है बल्कि दक्षता भी बढ़ी है। इसी एक तकनीक है इर नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्हें आईओटी किया करे। वो एक सेंसर है जो को मिट्टी में नमी की निगरानी करिया करे मौसम की ट्रैकिंग करिया करे और किसान ने पतो चाल जाए कि कने सिंचाई की जरूरत है इनपुट आवेदन भी मैंने आ जावे मोबाइल में संदेश आ जावे और बिर आधार पर सिंचाई के बारे में निर्णय लियो जा सके। एक नई तकनीक है इर नाम है मृदा सेंसर। इरो उपयोग जो को है मिट्टी में नमी रो स्तर तापमान और फसल रे विकास ने प्रभावित करने वाला जगह कारक है बेने नापने वास्ते करी जा करे। सेंसर जो का डेटा मिले है किसान बिने वायरलेस तकनीक के माध्यम से प्रेषित कर दे और खेत्र में नई पद्धति अपना ले। मौसम री निगरानी वास्ते मौसम रा डेटा जगह है किसान ने मिलन लग गया तो बिशु कने सिंचाई करनी है कने नहीं करनी है बिरो भी ध्यान कर जाए। फसल उगाने वास्ते किसो बीज लेनो चीज है कण लेनो चीज है आगलो मौसम किसो क्रेज सके इरो अनुमान लाग जाए। आजकल खेती बाड़ी में कृषि रोबोट भी आ गया है। एक कृषि रोबोट जो का है एक खेत में काम करनो आसान कर दियो है। गाय रो दूध देनो तक तक है नियंत्रित करने लग गया गाय रो दूध ए रोबोट निकाल लेवे। फल सब्जियां है यहाँ चुनाव कर लेवे घास काटने काम भी आजकल रोबोट करने लग गया। रोबोट की खासियत है कि रोबोट थके को नहीं और मिनख रे तुलना में घणो काम कर सके लगातार काम कर सके और ओर भी देवो कौन इन अलावा जो की आधुनिक प्रौद्योगिकी के समय समय पर आती रहे इन्हें भी काम में लेते रहे। ये आधुनिक तकनीक का फायदा है कि अपर खेत में सुविधा बढ़े। हालांकि इन साथ कई समस्या भी आवे है कि आधुनिक तकनीक ज्या ज्या लगे तो इन सार संभाल करना दोरो काम हो जाए मशीन खराब हो जाए तो पचे ठीक कराने जो कई बार जो है ये मशीन खरीदने का खर्चो भी घणो लाग जाए। ये मशीन साथ दुर्घटना होने डर रहे तो इसी स्थिति में जरूरी हो जाए कि सावचेती रे साथ है आधुनिक तकनीक रो उपयोग करे।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर भरत कुमार जाजरा की वार्ता कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग।

थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा की वार्ता, कृषि क्षेत्र में आधुनिक

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हितेंद्र व्यास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो सुबह है वो कुछ दिन पहले वाली बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आज सुबह जब घर का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का एक झोंक आया, जैसे कुदरत ने कहा कि उठिए, देखिए बाहर कितने खूबसूरत रंगों से सजाया है मैंने इसे। और साथियों, कल की रिमझिम बारिश, पत्तियों पर पानी की कुछ बूंदें ऐसे चमक रही थी मानो हरे पत्ते पर मोती बिखेर दिए हों, और मिट्टी से आती वो सौंधी सौंधी सी खुशबू हवा में ऐसा घुली कि हमारे दिमाग को एकदम तरोताजा सा कर देती है, ऐसा लगा आज। वाकई दोस्तों, बारिश की ये जो पहली सुबह है कल जो हुई थी उसके बाद, तो एक अलग ही मन में एक खुशी होती है। वो बारिश की बूंदें, ये हवाओं का मोड़, चाय की एक चुस्की और यादों का जोड़, आज फिर कुदरत ने बिखेरा है अपना रंग, लाया है ये मौसम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को

0: बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: जब

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: साथियों, सुबह हर एक नया पैगाम लेकर आती है। जिंदगी मुस्कुराने का नाम लेकर आती है। संभाल कर रखो अपनी रूह और काया को, क्योंकि ये सेहत ही तो जीने का असली मुकाम लेकर आती है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का ध्यान तो किसी तरह रख लेते हैं, लेकिन मन का क्या? अक्सर जब मन उदास होता है, तनाव बढ़ता है या कोई गहरी निराशा हमें घेरती है, तो हमारे बीच में से कई लोग कुछ रास्ते गलत चुन बैठते हैं। जी हां साथियों, हम आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है हमारे समाज के युवाओं के लिए अहम बात, नशे की लत और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आइए इस संबंध में सुनते हैं एक भेंट वार्ता। डॉक्टर कन्हैया लाल कच्छावा से बातचीत कर रही हैं श्री रेवंत राम लेघा। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
4: श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो चुपके से हमारे समाज विशेषकर युवाओं को खोखला कर रहा है, नशे की लत। इसे अक्सर एक अपराध या चरित्र की कमी माना जाता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे एक गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी मानता है। नशे की लत की शुरुआत किन परिस्थितियों में होती है, मानसिक स्वास्थ्य और नशे का आपस में क्या संबंध है, समय रहते इसके संकेत कैसे पहचाने और उपचार के क्या क्या प्रभावी उपाय मौजूद हैं, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर कन्हैया लाल कच्छावा। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाल के वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को।
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि नशे की लत केवल बुरी आदत है जैसा कि हमारा समाज समझता है, या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है? आप एक मनोचिकित्सक के रूप में इसे किस प्रकार देखते हैं?
5: सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है। और अक्सर क्या है कि हमारे जो परिवार के अंदर है या हमारे समाज के अंदर है, वो नशे को सामान्य क्या है कि एक आदत के रूप में या उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र के, उनके पर्सनालिटी के एक प्रॉब्लम के रूप में बोल दिया जाता है। और फिर क्या है कि जब इसको छोड़ने की बात आती है तो घरवाले सामान्यतः क्या है कि ठीक है कि मतलब आप बच्चों के सर पे रख के कसम खा लो या हाथ में पानी लेके कसम खा लो, या सामान्य सिखाते हैं कि नहीं मतलब तुम अपनी तरफ से छोड़ दो। इन

0: चीजों की वजह से जब व्यक्ति मान लीजिए कि कई बार प्रेरित होकर वो छोड़ भी देता है तो उसको कई बार विड्रॉल सिम्टम से बहुत ज्यादा गुजरना पड़ता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उस तकलीफ की वजह से वो वापस लेना शुरू कर देता है। यहां पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि नशा जो है वो सिर्फ कोई चरित्र की प्रॉब्लम या फिर कोई आदत नहीं है। नशा जो है एक प्रकार की बीमारी है, हमारा दिमाग बीमार हो जाता है और जब दिमाग बीमार होता है तो व्यक्ति है वो अपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, वो अच्छा फील करे, वो अपने हिसाब से कोई सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे वो शुरुआत में कुछ नशे की जो चीजें हैं वो स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो उनका बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है। बेसिकली वो एक प्रकार का बीमार दिमाग है और उस बीमार दिमाग को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फिर वो इससे बाहर निकलने में आसान हो जाता है उसके लिए।
1: क्या क्या भावनात्मक या मानसिक कारण हो सकते हैं या कौन सी मानसिक स्थिति आप मानते हैं जिससे वो व्यक्ति इस ओर आकर्षित होता है?
0: देखिए व्यक्ति कई बार जैसे क्या है कि एंजाइटी में होता है, उसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही हो, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, उसका मन उदास फील हो रहा हो, उसको अकेलापन फील हो रहा हो, वो कई बार ऐसे जैसे इग्नोर्ड फील करता हो, तो ये सब चीजें जो है वो उसके मन के अंदर उसको अच्छा फील नहीं करवा रही होती और ये अच्छा फील नहीं करना अगर कंटिन्यूस बना रहे तो वो अच्छा फील करने के अपने हिसाब से कई सारे साधन ट्राई करता है और उन्हीं साधनों के अंदर उसको कई बार इस नशे का जो है वो सजेशन मिल जाता है कि भैया ठीक है थोड़ा सा इसको कर, बढ़िया मजा आएगा। जैसे हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या बहुत सारे जो 25 साल के 30 साल के जो युवक आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने स्टार्ट है, वो मेरे दोस्त ने कहा था कि ये तो क्या है कि रामबाण दवा है, मैंने जो है इसको लेना शुरू कर दिया था। तो और कई बार इस तरह से भी हो जाता है कि जैसे मेरे जो दोस्त है वो लेते हैं तो उन्होंने क्या है कि मुझे कसम खिला दी थी, अब उनके ग्रुप में अगर मैं उसकी कसम को ना मानूं तो मुझे यूं लगेगा कि शायद वो मुझसे नाराज हो जाएगा, तो नाराजगी के चक्कर में मैंने लेना शुरू कर दिया। या फिर दोस्तों के ग्रुप के अंदर जो पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के चक्कर में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कई बार डोमेस्टिक जो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में जब मन अच्छा फील नहीं कर पा रहा होता तो अच्छा फील करने के साधन के तौर पे जो लोग हैं वो इस बुरी जो बीमारी है, ये जो दिमाग को बीमार करने वाली जो अवस्था, उसकी तरफ चले जाते हैं।
1: निसंदेह वातावरण और हमारी संगत का असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है, लेकिन बुरी संगत के बावजूद या आसपास के खराब वातावरण के बावजूद कई व्यक्तियों की मानसिक दृढ़ता इतनी अच्छी होती है, तो क्या इसके पीछे मानसिक मजबूती या आईक्यू जिसे हम कहें या भावनात्मक बुद्धिमता कहें उसका भी रोल या भूमिका रहती है?
0: इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप देखिए ना कि हमारे अंदर जो नशे करने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर प्रेरणा का बहुत ज्यादा योगदान है, और प्रेरणा जैसे आप यूं समझिए कि मान लीजिए कि तीन दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं तो चौथे की अपने मन में अपने आप ही प्रेरणा प्रेरित हो जाती है कि भैया मैं भी मूवी देखने चला जाता हूं। ये जो प्रेरणा है, प्रेरणा उसको कहां से मिलती है? प्रेरणा उसको मिलती है उसके दोस्तों से, प्रेरणा उसको मिलती है उसके परिवार से, प्रेरणा उसको मिलती है उसकी सोसाइटी से, प्रेरणा उसको मिलती है उसके सर्कल से।
1: जी
0: व्यक्ति अगर उसका सर्कल मान लीजिए कि ऐसा है कि जो नशा नहीं करता, उसका फैमिली ऐसा है कि जैसे वो नशा नहीं करता, उसका परिवार, उसकी जो सोसाइटी, वो ऐसी जो नशे से दूर रहती है, तो उसके अंदर जो नशे के करने की प्रति जो प्रेरणा उसके अंदर बहुत कम होगी, वो मानसिक रूप से वहां पर मजबूत फील करेगा, वो स्ट्रांग फील करेगा। तो प्रेरणा वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक ऐसी सोसाइटी का, ऐसी फैमिली का बिल्डअप करते हैं जो नशे से दूर है, तो वहां पर बहुत कम चांसेस है कि जो बच्चा है वो नशे की तरफ इंक्लाइन होगा, वो मानसिक रूप से वहां पर नशे के प्रति एक दीवार बनाकर अपने आप को मजबूत फील करेगा और वो नशे की तरफ नहीं जाएगा।
1: सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, ये सब प्रभावित करती है हमारे समाज को। जैसे पहले कहा जाता था कि साहित्य और सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, तो आजकल सोशल मीडिया या वेब सीरीज जो है वो समाज का दर्पण है, ये किस प्रकार प्रभावित करती है किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नशे की तरफ अगर देखा जाए तो?
0: सर अगर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मेरा रोल मॉडल है, मैं जिस तरह के संगीत को सुनता हूं, जिस तरह के गानों को सुनता हूं या जिस तरह की फिल्मों को मैं देखता हूं, और उन फिल्मों को के अंदर जिस तरह से मान लीजिए कि नशे को बहुत ज्यादा ग्लैमर करके दिखाया जा रहा है और नशे को एकदम नॉर्मल करके दिखाया जा रहा है, तो वो जो नशे को देखकर मेरे अंदर जो है मेरी जो मोरलिटी है, मैं क्योंकि उन सब चीजों को रोल मॉडल मानता हूं और मैं जो कैरेक्टर है उसके अंदर, जो भी अभिनेता है जो उसके अंदर एक्टिंग कर रहा है, मैं उसको अपना रोल मॉडल मानता हूं, तो वो जो रोल मॉडलिंग है मैं उसके जैसा खुद को बनाना चाहता हूं, मैं उसके जैसा खुद दिखना चाहता हूं, जैसे उसको ग्लैमर मिल रहा है वैसा ग्लैमर मैं लेना चाहता हूं, तो उन सब के अंदर मेरे अंदर भी ये भाव पैदा होता है कि भैया जैसे उस फिल्म के अंदर या उस सोशल मीडिया वेब सीरीज के अंदर या रील्स के अंदर जहां पर भी मैं देखता हूं कि हाँ यार ये नशा ये लोग कर रहे, ये नॉर्मल चीज है, तो मेरे अंदर भी ये नॉर्मलिटी वाला पार्ट क्रिएट होता है, मेरे अंदर जो मेरी मोरल बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज मेरी ढहती है, मोरल दीवार है वो ढहती है, मैं इसको नॉर्मल कंसिडर करने लग जाता हूं, और जब मैं नॉर्मल कंसिडर करने लग जाता हूं तो मेरे लिए नशे की तरफ जाना बड़ा आसान हो जाता है, तो ये हमें प्रभावित करती है।
1: बार बार ऐसी चीजें हम देखते हैं तो हमारी नैतिकता की जो परिभाषा

0: वो बदल जाती है और हम नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब व्यक्ति कोई नशा कर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति या उसकी जो मानसिक मजबूती है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं?
1: सर, व्यक्ति जो नशा कर रहा है, नशा जो होता है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं। इन सबको अपन साइको एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं ना, और ये हमारे न्यूरॉन्स की जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, काम करने की जो क्षमता है, एडप्ट होने की जो क्षमता है, उन सब क्षमताओं को ये प्रभावित करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा, अब न्यूरॉन्स क्या है, वो हमारे जो ब्रेन है उसकी जो बेसिक यूनिट है ना, और न्यूरॉन से मिलकर ही पूरा ब्रेन बना हुआ है, तो हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है, और यही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर वाला, जिसको माइंड बोलते हैं, सोचने समझने की हमारी जो क्षमता है, किसी चीज को हम कैसे फील करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किसी के साथ में अटैच्ड फील कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सब क्षमताओं को वो प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आपकी एनाटॉमी है वो खराब हो रही है। न्यूरॉन्स आपके सेंसिटिव होते जा रहे हैं। अब न्यूरॉन्स जब सेंसिटिव होते हैं, तो जो व्यक्ति नशा कर रहा होता है, तो आप देखिए कि उसके अंदर जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात पे जैसे चिड़चिड़ापन है वो उसके अंदर बढ़ने लगता है, वो गुस्से में होने लगता है, अगर उसको चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो वो बहुत ज्यादा कई बार एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे इसने क्या है कि ये तोड़फोड़ कर देता है, मारपीट कर देता है, घर के सारे सामान तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर, अंदर की जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स की, वो अफेक्ट होने लगती है। तो नशा जो है वो एनाटॉमी को खराब करता है, और एनाटॉमी है वो बेस है किसका, हमारे साइकोलॉजी का, हमारे मनोवैज्ञानिक, जो भी हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी अफेक्ट होती है।
0: तो लंबे समय तक नशा करने से या नशे की जो चीजें हैं वो सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और मानसिक बीमारी का भी कारण बन सकती है।
1: हाँ, ये मानसिक स्थिति को खराब करता
0: है। जैसे आपने अवसाद, तनाव, एंजाइटी और चिंता की भी बात की, क्या नशा करने से भी वो बन सकती है?
1: हाँ, वो सब बन सकती है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन की जो बायोलॉजी है, ब्रेन के जो वो हार्मोन्स जो हमें अच्छा फील करवा रहे हैं, बेहतर महसूस करवा रहे हैं, या हमारी ब्रेन की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नशा उन्हीं सब हार्मोन्स पे काम कर रहा है, तो वो हमारे अंदर जो मानसिक समस्याएं हैं वो भी पैदा कर देता है। आप देखिए, कई बार दिमाग ऐसी स्टिमुलेटेड फॉर्म के अंदर चला जाता है कि व्यक्ति जो है वो मानसिक जो रोग है उससे ग्रस्त हो जाता है, वो साइकोटिक हो जाता है, वो जो साइकोटिक वाली जो बिहेवियर है उसको शो करने लगता है। जैसे एरी बेरी बातें जिनको हम बोलते हैं कि जो रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, वैसी बातें करना, खुद को बहुत ज्यादा बड़ा बनाना या खुद को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझना, बहुत ज्यादा हाइपर है, वो उस स्टेट में भी चला जाता है, तो ये मानसिक रोग भी हमारे अंदर पैदा कर देता है,
0: भ्रम की स्थिति बन जाती है,
1: एक भ्रम वहम की स्थिति बना देता है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत लोग नशा करते हैं और नशे की एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद वो चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अपनी आदत जो है वो बुरी लगने लग जाती है। नशे के छोड़ने के दौरान जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्या क्या चुनौतियां उसके सामने आती है व्यक्ति के?
1: सर, एक्चुअल में जो आपने ये प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विड्रॉल जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है नशे से बाहर निकलने के अंदर। व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो इस समय तो उसको थोड़ा बहुत हल्की फुल्की किक फील होती है, तो शुरू में तो उसका जो मोटिवेशन होता है अच्छा फील करना होता है, लेकिन थोड़े समय बाद में चूंकि वो जो नशा है उसकी हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जिस डोज को आप ले रहे होते हो उस डोज पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, अब अच्छा फील नहीं हो रहा होता और व्यक्ति धीरे धीरे इसका गुलाम बन जाता है, क्योंकि मुझे डेली उस डोज को लेना है, बड़ी भी डोज के रूप में लेना है, उसमें मेरा पैसा भी लग रहा है, उसमें मेरा टाइम भी लग रहा है, तो मैं मेरी फैमिली ड्यूटीज कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मैं मेरे वर्क को नहीं कर पा रहा, तो उसके मन के अंदर उसकी मोरलिटी है वो आवाज उठाती कि भैया गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसको छोड़ दे। तो वो छोड़ने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करता है कि ठीक है, आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों नहीं करूंगा, और जब वो नहीं करने के निर्णय पे जाता है, तो फिर उसके अंदर जब वो इस सब्सटेंस से बचता है तो उसको बहुत ज्यादा विड्रॉल्स क्रिएट होते हैं। विड्रॉल्स के अंदर जैसे कई बार पूरा शरीर दर्द कर रहा है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, दिमाग है वो बिल्कुल भी फोकस्ड फील नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा एनर्जी लो हो गई है, जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे आपके अंदर से कोई बैटरी निकाल दी है, इतना आप लो फील करने लग गए। अब ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है, ये विड्रॉल सिम्टम्स आपके नशा छोड़ने के मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं,
0: कम करते हैं ये उसको
1: ना। हाँ, अगर विड्रॉल आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो फिर मुझे यूं लगता है कि शायद मैंने छोड़ के गलती कर ली, तो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये जो विड्रॉल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर इस विड्रॉल को मैनेज कर लिया जाए। अच्छा, विड्रॉल को मैनेज करने का तरीका क्या है, वही वहां पर हमें एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, जो मेडिकली हमें हेल्प करता है कि ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है ये हमारे अंदर ना आए। वो जब विड्रॉल सिम्टम्स जब मैनेज होते हैं, उसकी पीड़ा जब कम होती है, तो उसका मोटिवेशन और एनहांस होता है, वो और ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं कि भैया मैंने जो निर्णय लिया नशा छोड़ने का, वो मेरा निर्णय एकदम सही है। क्यों? क्योंकि मुझे पीड़ा नहीं हो रही, तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि व्यक्ति जो है एक टाइम के बाद में सिर्फ अपने विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए ही नशा कर रहा होता है। कि अगर वो नशा नहीं कर रहा तो उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, वो नशा नहीं कर रहा तो

0: ढंग से चल नहीं पा रहा, नशा नहीं कर रहा, तो उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको इस पैनिक से डर लगता है कि अगर मैंने नहीं किया ना तो फिर मेरे अंदर वापस वही स्टेट आ जाएगा। तो उसके चक्कर में विड्रॉल सिम्टम्स के मैनेजमेंट के लिए ही वो क्या कर रहा होता है, डेली अपने नशे का जुगाड़ कर रहा होता है। तो अगर हम विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज कर लें और उसमें अगर अपन मेडिकली हेल्प ले लें तो हम इस नशे के चंगुल से बाहर भी निकल सकते हैं।
1: दवाइयों के साथ साथ क्या जो मानसिक थेरेपी है वो इस पे प्रभाव डालती है इसमें?
0: हाँ सर, जो हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, क्योंकि व्यक्ति जब नशा कर रहा होता है तो वो अपनी हैप्पीनेस को भी अपने इस नशे के साथ में जोड़ लेता है। उसको लगता है कि मैं अगर खुश हो रहा हूं ना तो नशे के कारण हो रहा हूं, मैं अगर अच्छा फील कर रहा हूं तो नशे के कारण फील कर रहा हूं, मैं बढ़िया काम कर पा रहा हूं तो नशे के कारण से कर पा रहा हूं, मैं मेरी फैमिली ड्यूटीज फुलफिल कर रहा, जबकि वो कुछ भी फुलफिल नहीं हो रही होती, वो उसका एक फॉल्स परसेप्शन बना हुआ होता है। और अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं इसके बगैर रह नहीं पाऊंगा, मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा। इसको छोड़ दिया, जैसे कई बार सोसाइटी के अंदर ऐसी बातें भी प्रचलित है कि अगर छोड़ा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, अगर छोड़ा लकवा मार जाएगा, अगर छोड़ा तो कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर छोड़ा तो इस तरह की गंभीर प्रॉब्लम्स में चले जाओगे जिनका इलाज नहीं हो पाएगा। ये जो कॉग्निशन उसका बना हुआ है, ये जो सोचने का तरीका बना हुआ है, ये जो सोचने का तरीका उसका जो बिलीफ बिल्डअप हो रखा है, ये बिलीफ उसको छोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ने देता,
1: वो बाधा बन रहा है,
0: वो बाधा बन रहा है। तो ये जो कॉग्निशन, उसके जो सोचने समझने का जो तरीका है, वो तरीका जो है उस तरीके के ऊपर काम करने के लिए हमें थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो सीबीटी है, मतलब जो उसका कॉग्निशन है उस कॉग्निशन के अकॉर्डिंग उसके एक्शंस को चेंज करना और उसके अकॉर्डिंग उसको सोसाइटी की मुख्य धारा के साथ में जोड़ना। तो सीबीटी का हम इस्तेमाल करते हैं, इनिशियली हम जैसे मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी है, एमईटी है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार लोग आके हमें कहते हैं कि ना हमने तो उसको खूब समझाया लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, हमने तो उसको खूब बोला। तो मैं उनको कहता हूं कि आप एक बार यहां लेके आए, क्योंकि घर वाले ज्यादातर मोरलिटी बैकग्राउंड के ऊपर ही बात करते हैं, तुमने खराब किया, तुमने गलत किया, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसको भी पता है कि भैया मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं इससे निकलना चाहता हूं, लेकिन उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो वो जो रास्ता नहीं मिल रहा होता तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो जब वो हमारे पास में आता है तो हम लोग उसके कॉग्निशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसा कौन सा उसका कॉग्निशन है जो उसको हेल्पलेस फील करवा रहा है, ऐसा कौन सा उसका सोचने का तरीका है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, ऐसा कौन सा तरीका जो उसके अंदर मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है जिसकी वजह से वो रोजाना ले रहा है। तो उन सारे कॉग्निशंस को करेक्ट करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज की आवश्यकता होती है, जैसे सीबीटी वगैरह की, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपीज, इन सब की हमें जरूरत पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, निसंदेह जो मरीज है उसको आलोचना की बजाय उसके सोचने की धारणा या सोचने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता होती है। परिवार और दोस्तों की कितनी भूमिका होती है नशा छुड़वाने में?
0: सर, मैं मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि जो नशा छोड़ने के अंदर परिवार दोस्तों की जो भूमिका है वो 80% से ज्यादा है।
1: जी,
0: डॉक्टर जो है, हम लोग जो है वो, जैसे मैंने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, मैंने उसको दवा दे दी, ठीक है, दवा देने से उसके विड्रॉल्स मैनेज हो गए, उसको अच्छा लगा, फील हुआ, ठीक है। अब वो जैसे ही अपने परिवार के बीच में, अपने फ्रेंड्स के सर्किल में जाता है, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब व्यक्ति नशा छोड़ने का ट्रीटमेंट लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है कि भैया मैं तो क्या है कि कभी भी इसको छोड़ सकता हूं,
1: वो नई शुरुआत है,
0: ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे वो होता है ना कि कई बार हम अक्सर एक एग्जांपल यूज करके भी बोल देते हैं कि भैया पानी के अंदर तो तैराक ही डूबता है, क्योंकि उसी को कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं डूबेगा, इसके चक्कर में और गहरा और गहरा और गहरा जाता है, कि
1: अति आत्मविश्वास होता है,
0: अति आत्मविश्वास। तो ये कई बार क्या है कि वो जैसे शुरुआती ट्रीटमेंट लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है मैं तो छोड़ सकता हूं। अब वो अपने मान लीजिए कि फ्रेंड से मिलता है तो दोस्त वगैरह जो उसको कहते हैं कि यार ले ले एक दिन में क्या जाता है, वो जो एक दिन है ये सबसे बड़ा उसके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट है कि एक दिन में क्या जाता है। उसको समझना पड़ेगा कि जब उसने फर्स्ट वो नशे में गया था ना, वो भी उसने कभी एक दिन ही किया था,
1: शौक या एक दिन के लिए
0: एक दिन ही किया था, फिर वो दूसरे दिन फिर उसने एक दिन किया, फिर तीसरे दिन फिर एक दिन किया। वो जो एक एक दिन है वो कब 7 दिन में, कब 15 दिन में, कब महीने में, कब सालों में कन्वर्ट हो गया उसको पता ही नहीं चलता, और उसको लगता है मैं एक ही दिन कर रहा हूं। तो ये जो फ्रेंड्स जो है, मैं कहता हूं डॉक्टर सिर्फ दवा देता है, इलाज करता है, लेकिन छोड़ने की जो प्रेरणा, हिम्मत जो है वो परिवार देता है, समाज देता है, उसके दोस्त देते हैं, वो जिस माहौल में रह रहा है वो माहौल उसको प्रेरणा देता है, और प्रेरणा का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है।
1: वातावरण ही हमारे व्यक्तित्व और हमारी जो आदतें हैं उनको बनाता है,
0: हमारे सोचने समझने के सारे तरीके को डेवलप करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में आप युवाओं और अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे तनाव और जो ये समस्याएं आ रही हैं उनका सामना स्वस्थ तरीकों से करें, ना कि नशे से?
0: मैं युवाओं को और स्पेशली मैं पेरेंट्स को इस बात के लिए बोलना चाहूंगा कि वो धृतराष्ट्र बनकर ना बैठे। अगर धृतराष्ट्र बनेंगे तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो दुर्योधन जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे, मतलब गलत रास्तों पे चले जाएंगे। और अगर वो दुर्योधन जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि हमारा बच्चा कहीं कोई गलत राह पे तो नहीं जा रहा। तो हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे पहचाने। अगर मान लीजिए कि बच्चा है वो सामान्यतः बहुत अच्छे से रहता था, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, या

0: व्यवहार में उसके बदलाव आ रहा है। वो पहले आपके साथ में बैठ के बहुत अच्छे से बातचीत वगैरह करता था, वो बातचीत नहीं कर रहा, वो आपसे छुपा रहा है, आपसे नजरें नहीं मिला रहा, आप उसको देखते हो तो कभी वो बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो रखा है, उसकी आंखें लाल हो रखी है, उसकी सांसें तेज चल रही है, खाना वो नहीं खा रहा, रात को बहुत लंबे टाइम तक घर से बाहर रह रहा है। अगर ये सब चीजें आपको नजर आ रही है, उसके कुछ नए दोस्त बन गए, उसकी उम्र से ज्यादा बड़े दोस्त उसके बन गए, अगर ये सब चीजें आपको अगर नजर आ रही है ना, तो मैं कह रहा हूं कि दिमाग में सबसे पहले ये सोचे कि ये ऐसा कर रहा है
1: जी।
0: सोचे इस चीज को, ऐसा नहीं कि नहीं हमारा बच्चा नहीं कर रहा, या कोई पड़ोस में आके आपको बोलता है कि भैया आपका जो बेटा वो गलत राह पे जा रहा है, तो हम कई बार क्या उससे लड़ने बैठ जाते हैं कि भैया तू मेरे बच्चे के ऊपर आरोप कैसे लगा रहा है। हमें समझना पड़ेगा वो आरोप नहीं लगा रहा, वो आपकी मदद कर रहा है,
1: वो सच्चाई बता रहा
0: है, वो सच्चाई बता रहा है। उसको हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उसको जितना हम एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, और बच्चों के अंदर इस तरह के अगर हमें साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, तो हम तुरंत उनसे बात करें, हम कोई जो काउंसलर है, जो भी डॉक्टर है उससे बात करें, साइकेट्रिस्ट है उससे बात करें, इसमें किसी भी प्रकार की देरी ना करें। क्योंकि आज जो बीकानेर की स्थिति है ना, मैं तो कई बार मजाक में भी ये बात बोल देता हूँ, और पेरेंट्स में भी अक्सर बातचीत होती है कि साहब मारो जो टाबर है वो पढ़े नहीं, वो नौकरी नहीं लगे, वो काम नहीं करे, कोई दिक्कत को नहीं, सब चाल जी, लेकिन नशो नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: लोग इस कदर तक सोचने लग गए तो हम सोच सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का स्तर हमारे बीकानेर के अंदर किस लेवल का हो रखा है।
1: निसंदेह ये एक गंभीर समस्या है। श्रोताओं, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे दोषी ठहराने या उससे दूरी बनाने के बजाय उसकी बात सुने, उसका साथ दें, और समय रहते विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए प्रेरित करें। सही उपचार, परिवार का सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से नशे की लत पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर कन्हैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर, और मैं पूरे आकाशवाणी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओं, अभी हमने सुनी एक भेंट वार्ता नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर। डॉक्टर कन्हैयालाल कच्छावा से बातचीत कर रहे थे श्री रेवंत राम लेघा। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानी व्यास की थी और संयोजन श्री अमित सिंह का था।

कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपकी सेवा में हितेंद्र व्यास ने प्रस्तुत किया। अब आज्ञा दें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के

101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारु चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में। फिल्म का नाम है सिंदूर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

जब सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम है बंधन।

0: अभी आपने सुना यशुदास का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम था सावन को आने दो। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत। फिल्म है मिलन।
1: शोर,
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारो चैनल से बोल रहे हैं। मुझे 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।
1: पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दे।
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। तई मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृणालिनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है।

23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जनता रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony.

किट्टू को तो आ जाने दो, निर्मला आंटी का हालचाल पूछने जाऊंगी तो लौटते वक्त केक दही और सब्जी भी ले आऊंगी। फुर्ती से माँ के पास आकर सोना ने उत्तर दिया और बिना रुके वापस रसोई घर में घुस गई। ये दोनों माँ बेटे आते ही फुल वॉल्यूम में टीवी चलाकर आपस में बकर बकर करने लगते हैं। इतने दिनों से बीमार पड़ी, मुझे तो कोई देखने नहीं आता, एक निर्मला जी है। रमला ने शिकायतों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया। चाय और ब्रेड पकौड़े बनाकर सोनिया माँ के पास आकर वापिस आई। वॉल्यूम में पानी से माँ को स्पंज कराया, उसके उलझे बालों को कंघी से सुलझाया। जब वह रमला के बालों पर तेल लगा रही थी, टिटू आ गया। टिटू, तेरी नानी की तबीयत कैसी है रे? रमला ने बातचीत शुरू करने की गरज से टिटू से पूछा। टिटू रमला की बात अनसुनी करके रिमोट की तरफ लपका। सोनू ने ब्रेड पकौड़े की तस्तरी को पास रखे तिपाई पे रखा, फिर माँ को चाय का गिलास पकड़ाकर तैयार होने के लिए बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर घर से बाहर निकलते वक्त उसने टिटू को पुकारा, टिटू दरवाजा बंद कर ले, फ्लास्क में रखी चाय भी पी लेना, मैं जरा बाजार से होकर आती। ओके मौसी। माँ बाप के अलगाव का दंड भुगत रहे टिटू ने जवाब दिया और मस्ती से ब्रेड पकौड़ा कुतरना शुरू कर दिया। घर से 10-12 कदम निकलते ही उसे मोनालिसा स्कूटी स्टार्ट करते हुए दिखी। उसे देखकर एक अपने तो भरी नजर डालते हुए मोनालिसा बोल पड़ी, आओ दीदी मैं आपको पावनपुरी मार्केट छोड़ दूं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जल्दी से हरी अंकल के घर पहुंच जाऊंगी, कहकर वह स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। वैसे दीदी आपसे एक बात कहनी थी, आप मोटू दीदी के साथ ज्यादा घूमो फिरो मत, यह तो बदनाम है ही और आपको बदनाम करवा के रहेगी। मोनालिसा उसे चेताते हुए बोली। थैंक यू मोना, कहकर वह सहानुभूति भरे स्वर में बोली, एक बात तुमसे पूछनी थी, वो हरी अंकल है ना, उनके 2 कहानी संग्रह छपकर आने वाले, बेचारे अंकल की बड़ी इच्छा है उन पर पाठकों की संगोष्ठी हो, तो अंकल और उनके बेटे बेटियों किसी इवेंट मैनेजर से बात करने, आप क्यों पढ़ती इस पचड़े में? ब्लू जींस और पिंक टॉप पहने मोनालिसा ने बाइक की रफ्तार धीमी करते हुए सलाह दी। पर मोना, बेचारी निर्मला आंटी न्यू अपोलो से नी रिप्लेस करवा के लौटी, उन्हें कितना अच्छा लगेगा अगर। उसने अपने मन की बात साझा की तो मोनालिसा चुप कर बोली, दी आपने कोई ठेका ले रखा है उनको खुश देखने का? उन्होंने कभी आपको अपने बेटे बेटी की शादियों और पोते पोतियों के नाम करने में इन्वाइट किया? अपने मौलिक लेखन पर ध्यान दो दीदी, यही आगे जाकर आपके काम आएगा। पर घर में मम्मी मुझे दिखते देखकर ताने मारना शुरू कर देती है, भाइयों से मेरी चुगली करती फिरती है, कहते हुए रुआ से उठी। उसे संतना देने के अंदाज में मोनालिसा समझाने लगी, बड़ों का काम ही होता है छोटों को डायलॉग सुनाना, हम भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। लो वो आ गया कान्हा एन्क्लेव, चौराहे मोनालिसा ने बाइक रोक दी। वह तेज कदमों से कान्हा एन्क्लेव वाले रास्ते में चल पड़ी। करीब 15 मिनट बाद जब वह हरिजी के घर साहित्य कुंज के पास पहुंची तो उसने देखा हरिजी और उनकी पत्नी घर के बाहर कुर्सियों पर बैठे। पास जाकर उसने नमस्कार किया। उत्तर में निर्मला जी और हरिजी से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह अनमनी सी हो गई। फिर भी अपनी आवाज में गर्मजोशी लाते हुए बोली, आंटी अंकुर के लिए स्वेटर बुन रही है, मैंने भी अपने लिए गुलाबी कार्डिगन बुना है। लेकिन निर्मला जी निर्विकार भाव से स्वेटर बुनती रही। उसे अपनी पत्नी से बतियाता देख हरिजी जल भूल गए। उसे चिढ़ाते हुए बोले, सुना है आजकल आप अपने आप को साहित्यिक समीक्षिका कहलवाना ज्यादा पसंद करती है, मैं तो आपको आपकी कहानी की समीक्षा की फेयर कॉपी देने आई थी अंकल। उसने भी निर्विकार भाव से हैंडबैग खोला, अपनी लिखी पुस्तक समीक्षा हरिजी को बेमन से सौंपा, फिर निर्मला जी की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ। तभी उसे अपनी पीठ पर हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने चमक कर हरिजी की तरफ देखा। हरिजी अपनी हेरिंग एंड के तार को हंटर की तरह लपेटकर दूसरी बार उसे चेताने के चक्कर में थे। वह फुर्ती से उनके सामने से हट गई। हरिजी खिसिया कर रह गए। खुशामदी भरे स्वर में बोले, समीक्षा तो खूब मन लगाकर की है, तुम इसे साहित्य परिक्रमा में भेज देना। चलो अब मेरी नई किताबों का सेट स्टडी में सेट करवा दो। उसने हैरानी से हरिजी को देखा, फिर खिजल स्वर में बोल पड़ी, 10-15 मिनट बाद अंधेरा छा जाएगा, आजकल आपके घर के पास कोई ऑटो भी नहीं मिलता, उधर मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही। तो तुम साहित्यकार बन गई? अरे साहित्यकार को तो बोल्ड बनना पड़ता है। दिल्ली के सुमन जी और जयपुर के समीर पासा तो मेरा अभिनंदन करने के लिए मरे जा रहे हैं, बस कोई साथ चलने के लिए यंग चैप मिल जाए तो मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म कर दूं, तुम चलोगी? आंख मटकाकर व्यंग्यात्मक स्वर में उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अह और स्वार्थ का रंग घुला मिला था। हरिजी का पूछने का अंदाज उसे अपनी कंठपट्टी पर हथौड़े के पहाड़ जैसा प्रतीत हुआ। वह वितृष्णा से भर गई। वैन के तीखे स्वाद को जबरन पीकर समित स्वर में बोली, अंकल मम्मी 6 महीने से बेडिडी में, नौकरी से आकर उनका सारा काम मैं भी करती हूँ। सुनकर हरिजी डिटाई से बोले, तो क्या हुआ, तुम्हारी आंटी भी तो कई बार बेडिडी में थी, मैंने तो लिखना नहीं छोड़ा। आपकी बात अलग है अंकल, वह बुदबुदाई और चल पड़ी। वह अपने में मगन चली जा रही थी कि उसे मोड़ पर हरिजी की छोटी बहू सुमनलता दिखाई पड़ी। उसने अभिवादन की मुद्रा में सिर हिलाया। सुमनलता पूछ बैठी, घर से आ रही?

0: पापा जी आपको याद कर रहे थे। वो होंठों पर आई व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, उनको समीक्षा की कॉपी दे दी है भाभी और पापा जी की नई किताबों का सेट। सुमनलता ने पूछा। सुमनलता की बात सुनकर सुमनलता के दिमाग की नसें चटकने लगी। वह तेजी से मार्केट की ओर बढ़ चली, सीधे मिल्क बूथ के समीप आकर रुकी और हांफने लगी, अरे क्या हुआ, आप तो इस ठंड में पसीना पसीना हो रही, जरा उस सीमेंट की बेंच पर जाकर सुस्ता लीजिए। एक आत्मीयता भरा स्वर उसके कानों से आ टकरा, एक राहत की लहर सीधे उसके भीतर तक उतर आई। उसने घूमकर देखा, पीछे सुलेखा खड़ी थी। अरे भाभी आप यहाँ, मैं तो यहाँ दही लेने आई हूँ, वह फीकी हंसी हंसते हुए बोली, और मैं दूध लेने आई हूँ, पर आपका चेहरा ऐसा उतरा क्यों है, सुलेखा ने मुस्कुराकर पूछा। दुकान में दूध दही लेने वालों की लंबी लाइन लगी थी। सुलेखा लाइन में खड़ी होकर बोली, रुपए दे दीजिए, मैं आपके लिए भी दही ले लूंगी, आप रेस्ट कर लो। परंतु वह सुलेखा के पास खड़ी होकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज भाभी एक सलाह तो दीजिए, माँ से पूछूंगी तो बाद में ताने मार मार के मेरा जीना दुभर कर देगी। हरी जी अक्सर कहते मेरे साथ बाहर चल सकती हो क्या, हरदम उनकी बहू सुमनलता और वे मेरे घरेलू मामलों में ताक झाक करते रहते, तो उनके घर में जाना छोड़ दो, सिंपल, कोई रिश्तेदारी तो नहीं उनसे आपकी। सुरेखा ने झट से अपनी राय सुझाई, पर भाभी मुझे लगता है किसी वरिष्ठ लेखक से अपनी रचनाएं चेक कराने से मेरी राइटिंग स्किल में ज्यादा निखार आएगा, मेरी आउटलुक ब्रॉड बनेगी। उसने दबे स्वर में अपनी मनसा सुलेखा के सामने प्रकट की। अगर ऐसा होता तो हर लेखक लेखिका के बेटे बेटी बड़े बड़े राइटर्स बन जाते। एक बात बताइए, आपकी कितनी रचनाएं उन्होंने संशोधित करके किसी बड़ी पत्रिका में भिजवाई, जबकि मेरे पड़ोस में वो बोला जी है ना, 20 साल से उनकी रचनाएं हरी जी और हास्य कवि भोले शंकर जी संवारते रहे। किंचित कसीले स्वर में सुलेखा ने अपने मन में उमड़ने घुमड़ने वाली शंकाएं और दृष्टिकोण एक साथ उसके सामने परोस दी। हरी अंकल भी ठीक लगते थे भाभी, पर कुछ समय से मेरे साथ कुछ उठपटांग हरकतें और बातें करते रहते। आज भी कह रहे थे तुम मेरे साथ जयपुर या दिल्ली चलोगी। उसने हिचकते हुए अपने मन की बात सुलेखा के साथ साझा की। इसीलिए तो आपसे मैं कह रही हूँ कि ये प्रेरणा फिरणा का लेने का मोह छोड़ दीजिए, अपने पर भरोसा करना सीखिए। आज बिना स्वार्थ कोई किसी से बात तक नहीं करता, सभी एक दूसरे से अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। ये तो अच्छा हुआ उनका सही रूप इतनी जल्दी आपके सामने आ गया, सुरेखा उसको सावचेत करने के अंदाज में बोली। थैंक यू भाभी सो मच, पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। सालों बाद पापा की शक्ल से मिलते जुलते हरि अंकल मिले तो उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये लीजिए दही की थैली, और यह तो भगवान का शुक्रिया मनाइए कि आज आपने मुझसे अपनी समस्या शेयर की। मैं भी जो बात आपसे कहना चाह रही थी आपसे बेखटके कह सकी। उसके हाथ में दही की थैली पकड़ाते हुए सुरेखा ने अपने मन की बात कहकर मानो तसल्ली की सांस ली। ये लीजिए रुपए, इतना मेरा गिर गया, उसने हैरत से सामने जल रही स्ट्रीट लाइट की तरफ ताकते हुए कहा। तो क्या हुआ, आपके भीतर ऐसा से कमतरी का अंधेरा तो हमेशा के लिए छट गया। सोनिया की तरफ ममता भरी नजर डाल सुरेखा दूध वाले से दूध लेने में व्यस्त हो गई, लेकिन सोनिया को लगा मानो लेखिका के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। उसके मन के अंधेरे कोने आत्मबल की रोशनी से जगमगा उठे।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी श्रीमती पूर्णिमा मित्रा की कहानी नया सूरज। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए जगजीत सिंह के गाए

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के गाए कुछ भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9 बजे वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर

0: की घटना के बाद विद्यार्थियों के हित में पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ ना जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित कराना आवश्यक था।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों ने निरंतर कार्य किया और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित विधेयक को पारित किया जाए।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से चिकित्सकों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने और जल्द स्वस्थ होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में उनसे जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करने की भी कामना की। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी के स्थान पर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है। श्री गंगवार राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और राजस्थान में शिक्षा सचिव रह चुके हैं। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है। कल जयपुर में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, पुष्कर सरोवर, पुंछरी का लौठा, खाटू श्याम जी मंदिर, बेणेश्वर धाम और रामदेवरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, विश्राम स्थल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान गुरु पूर्णिमा और रामदेवरा मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही प्रदेश के पैनोरमाओं के संरक्षण, रखरखाव और देवस्थानों से जुड़ी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर A0 FIR दर्ज होगी। राज्य पुलिस की ये नई व्यवस्था कल से लागू हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। A0 FIR के तहत शिकायत मिलते ही संबंधित मामले में बिना देरी के FIR दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। पहले ये व्यवस्था 5,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी

0: के मामलों में लागू थी। राज्य पुलिस के अनुसार 1,00,000 से 1,00,000,000 रुपए तक के मामलों की जांच जिला स्तर पर, जबकि इससे अधिक राशि के मामलों की जांच राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर करेगा। राज्य सरकार की ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के तहत अब 21 और नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसके माध्यम से बिजली और नगरीय सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इसके तहत बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, यूडी टैक्स और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सहित कई नगरीय सेवाएं भी व्हाट्सएप पर मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि सेवा शुरू होने के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। इन सेवाओं को जल्दी ही ई मित्र मोबाइल ऐप और ई मित्र कियोस्क से भी जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों में कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर राज्य की समग्र रैंकिंग में सुधार लाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास सूचकांकों पर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बीकानेर, उदयपुर और सालुम्बर समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। सालुम्बर के झालरा में 62 मिलीमीटर पानी बरसा। कल अजमेर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, प्रतापगढ़, सिरोही, सीकर, राजसमंद, झुंझुनू, जालौर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर सहित अन्य शहरों में बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। उधर भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों और कुछ मवेशियों की मौत हो गई। बरसात के कारण कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की आवक जारी है। पाली जिले के जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और जलस्तर बढ़कर 31 फीट पहुंच गया है। वहीं डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। इस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मिनिमम 215.5 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावाड़ चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 और 35 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए सीमा मिश्रा और सखियों का गाया हुआ ये लोकगीत।

आपने सुना सीमा मिश्रा और सखियों का गाया हुआ ये लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 और 30 सेकंड हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा के तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज के अंक में हम लेकर आए हैं पूज्य बापू का एक पत्र जो उन्होंने मणिलाल और सुशीला गांधी को लिखा था। ये पत्र 19 मई 1929 को लिखा गया था। पूज्य बापू लिखते हैं, चिरंजीवी मणिलाल और सुशीला, नीरस होने पर भी तुम दोनों के पत्र आते अवश्य हैं। मैं तो सरस या नीरस नियमपूर्वक कुछ भी नहीं लिखता, इसलिए तुम दोनों की शिकायत सच्ची मानी जाएगी। किंतु इस यात्रा में तारीखों का कुछ ध्यान नहीं रख पा रहा हूं। मेरी समझ में बर्मा और आंध्र देश की यात्रा में तुम्हारी डाक नहीं देख पाया। अब यात्रा की गति कुछ कम होगी, इसलिए मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। सीता नाम तुम्हें न पसंद आने की खबर मुझे नाना भाई की मार्फत मिली थी। न पसंद आने का कारण तो ठीक लगता है। सुशीला के लिए तो सीता का आदर्श ठीक है, किंतु बालिका के लिए तो किसी विद्रोही महिला का नाम होना चाहिए। ऐसे सब गुणों वाली किसी कन्या का शास्त्रों में विवरण है या नहीं, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। इस भावना की खबर मुझे पहले दे देनी चाहिए थी। अब कोई दूसरा नाम सोचूंगा। हम लोगों में अंग्रेजों की तरह एक व्यक्ति के दो तीन नाम हो सकते हैं। सीता के चाहे दो तीन नाम रखते, ऐसा लिखकर मैं सीता नाम का समर्थन करना चाहता हूं। सीता जैसे पत्नीत्व का आदर्श है, वैसे ही वो कुमारी का भी आदर्श है। पर मेरा आदर्श तो है कि स्त्रियां विवाहित होते हुए भी कुमारी का जीवन बिताएं। सीता और पार्वती आदि इन दोनों आदर्शों तक पहुंच चुकी थी। रामायण आदि में उनका जैसा वर्णन है, उनके अनुसार विकार रहित थी। जब सीता को रामचंद्र का वियोग सहना पड़ा तो उसे कोई कठिनाई न हुई, क्योंकि उसका मन इतना निर्विकार था कि रावण उसे मलिन भाव से स्पर्श भी नहीं कर सका। इसलिए सीता नाम होते हुए भी स्त्री निर्विकार बनने की सतत चेष्टा करे, इसलिए सीता सात सतियों में एक है। सती का अर्थ ये नहीं है कि वो पति के प्रति वफादार हो, सती का अर्थ है वह स्त्री जो निर्विकार हो। सीता के दो बालक हुए, इसे उसके दोषों में गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां जो वर्णन है वो यही है कि केवल संतान की इच्छा से ही राम और सीता मिले। आज ऐसा नहीं होता। आज के बच्चों का जन्म विकार के कारण होता है, इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति प्रजोत्पत्ति को निषिद्ध मानता है। मैं तो सीता आदि के विषय में जो मान्यता है उसकी बात करता हूं। सीता को हम एक ऐतिहासिक स्त्री न माने, केवल एक आदर्श नारी समझे। ऐतिहासिक राम सीता को हम नहीं मानते। ऐतिहासिक राम आज मौजूद नहीं है, किंतु जिसके बारे में हम संपूर्ण ईश्वरत्व का विश्वास करते हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, वह राम आज मौजूद हैं। उस राम नाम को रटकर हम तरेंगे। गुण दोषों वाले राम में किसी को तारने की शक्ति नहीं होगी। यह समझ में न आया हो तो मेरे साथ चर्चा अवश्य करना। जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है उसमें मुझे सीता के नाम से उच्च आदर्श वाला कोई नाम मिला नहीं, इसलिए ये नाम मुझे बहुत प्रिय है। फिर बोलने में मधुर छोटा है।

दोनों व्यंजन भी हल्के हैं, संयुक्ताक्षर एक भी नहीं और अंत में आ होने से नाम में संगीत की ध्वनि भी है। किंतु तुम इसी नाम से बालिका को बुलाओ, इसका मैं आग्रह नहीं करता। तुम स्वयं कोई नाम ढूंढ कर रख लो, इसमें कुछ दोष नहीं। धार्मिक ग्रंथों में या उपन्यासों में से कोई नाम तुम्हारे सोचे हुए गुणों का सूचक हो तो वो नाम लिख दो, मैं तो खोजबीन करूंगा ही। छगनलाल का दुखद किस्सा तो तुम्हें मालूम हो ही गया है, उससे उद्योग मंदिर में बड़ा तूफान आ गया है। अब जब मैं वहां थोड़े दिन बाद पहुंचूंगा तब ज्यादा खबर मालूम होगी। देवदास अभी वही है, नीमू वापस बारडोली पहुंच गई है। रानी का मोरवी का पता है, कुंवरजी खेती का घर, त्रिभुवन पार्के की गली मोरवी। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बाबी कुशल पूर्वक है, इमाम साहब कुछ कमजोर तो हैं पर वैसे ठीक हैं, बापू के आशीर्वाद। श्रोताओ, अभी आपने पूज्य बापू का एक पत्र सुना जो उन्हें मणिलाल और सुशीला गांधी को लिखा था। आइए सुनते हैं एक भक्त

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। विषय था पत्र मणिलाल और सुशीला गांधी। वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का, प्रस्तुति श्री अशोक की और संयोजन श्री अमित सिंह का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1335वां अंक।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब

0: सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा
0: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी,
1: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
1: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोद। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की ये हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
1: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
1: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोद उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोद का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोद का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
1: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
1: जी।
0: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
1: जी।
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
1: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है लेकिन सुरक्षा का है
1: जी।
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
1: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओ, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओ, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोद उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों।

0: की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: हैं? वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
4: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
3: वो कैसे?
4: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना च-

0: खाते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
3: ये तो है। चढ़ते रहो।
1: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
0: हाँ
1: चलो, पहुँचे तो सही।
3: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: हैं?
3: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
1: मैं क्योटो देखूंगा।
3: और मैं ओसाका।
1: क्यों नहीं, चलो
3: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर

0: पर से उन शहरों को देख सकेंगे।
1: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
1: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे, उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
3: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
3: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है,
1: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
3: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
1: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था।
0: अब मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
3: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहां से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सी बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
4: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
3: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
4: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
3: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
4: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी,

0: ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस पुड़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि उनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, उन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ
3: इधर आइए
0: जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है और नमक, इसका वतन कौन सा?

0: कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वेतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। नासूमों की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1335वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मेरी रेट 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है आशा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
7: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले।

0: आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
7: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
6: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
7: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
6: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
7: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
6: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
7: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
6: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
7: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
8: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
9: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
8: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और पलक मुंजाल को, फिल्म का नाम था आशिकी 2। फिल्म में गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के धोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम में लीजिए। अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह, मिथुन और साथियों का गाया हुआ। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

चकोर अरोड़ा मर्डर केस। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। अरिजीत सिंह को ही सुनिए, फिल्म का नाम है राज।

इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। अरिजीत सिंह को ही सुनिए, फिल्म का नाम है राज रिबूट।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए एजेंट विनोद फिल्म का गीत अरिजीत सिंह के स्वर में।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तुम बिन टू का ये गीत। गीत को लिखा था मनोज मंतशिर ने और संगीत था अंकित तिवारी का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहे तो स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के ठीक 11 बज रहे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत को लिखा है निदा फाजली ने और संगीत उषा खन्ना का।

कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म राजपूत का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए हेमलता की आवाज में फिल्म सुनैना का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तुम।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में, गीत को लिखा था नूर लखनवी ने, गीत को गाया था तलत महमूद ने और फिल्म थी परछाई। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल पर सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म आई मिलन की बेला का ये गीत। गीत को लिखा है हर्षद जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कामचोर का ये गीत। इतनी बार का लिखा ये गीत, संगीत दिया राजेश रोशन ने। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत। गीत को लिखा था हर्षा जयपुरी ने और शंकर संगीत था शंकर जय

क्वेश्चन का लीजिए। कार्यक्रम में आप सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म मेरे हम सफर का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

महेंद्र कपूर और बलबीर के गाए इस मेरे हमसफर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामले की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंत्री हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के

0: शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का डोलामरु चैनल है। मीडियम वेव 205.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा हमारी सभा में दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर।

में सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे बच्चों में सामाजिकता और शेयरिंग की आदत का विकास, महिलाओं में फैटी लीवर की समस्या और राष्ट्रीय आयकर चेतना दिवस, महिला करदाताओं के लिए आयकर में छूट। साथ ही आप सुनेंगे पॉक्सो एक्ट, बच्चों की सुरक्षा और वार्ता सुनाई जाएगी, हिंदी लेखन में महिला साहित्यकारों का योगदान, वार्ताकार होंगे श्रीमती अन्नपूर्णा पंजारिया। हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा सामान्य जागरूकता है आवश्यक। लघु जानकारी के विषय रहेंगे जंक फूड का सेवन और स्वास्थ्य, WTO, प्लास्टिक, प्रदूषण और बचाव, व्यापार घाटा और आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम।

संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे संध्या 6:40 पर हमारे आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा के विषय रहेंगे मिश्रित खेती, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कुसुम योजना। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, वर्षा ऋतु में पशुओं का उचित प्रबंधन एवं मौसमी रोगों से बचाव विषय पर डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे से श्री संदीप पारेख की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। आखिर में आप सुनेंगे मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य।

7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और लोक संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:15 पर।

फिल्म संगीत का प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सीमा अनिल विश्वास की गाई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थी सीमा अनिल विश्वास। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में पहले सुनिए अलका याग्निक के स्वर में फिल्म फिजा का ये गीत। साथी कलाकार हैं उदित नारायण।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल पर सुन रहे हैं। डीजे कार्यक्रम में आप सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है देव कौरली ने, गीत को गाया है उदित नारायण और साथियों ने और फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म तुम्बिन के गीत के साथ
1: ही जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज दोनों सदनों ने शुरुआत में करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और इस मामले पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और अगले चार दिन तक कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सीकर सहित अनेक जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से डूंगरपुर में सोम और माही नदियां उफान पर हैं तथा कई स्थानों पर जलभराव और पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में सिविल लाइन, नालों और ड्रेनों की नियमित सफाई करने तथा जलभराव नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, रपटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराने को कहा। संभागीय आयुक्त ने अस्पतालों आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल भराव रोकने और आपदा की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहे अंगदान जागरूकता अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आमजन की बढ़ती भागीदारी से राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश में 1,08,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। अंगदान जागरूकता अभियान 3 अगस्त तक चलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था और जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। मंत्रालय ने कहा कि कुशा मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न तरह के हवाई खतरों को एक विस्तृत दूरी और ऊंचाई के दायरे में निष्क्रिय करने में सक्षम है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और सभी संबंधित पक्षों को बधाई दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

जी आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मरु चैनल है। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। बैनी सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं मीना ओझा और मीनाक्षी सुनकर।

0: आओ मिलकर बात करें मन के हर एहसास की, कुछ अपने कुछ आपके, जीवन की हर आस की।
1: ज्ञान की बातों के संग संग मुस्कानों के फूल खिलाएं, हर मुलाकात में कुछ सीखें और बेहतर कल की राह बनाएं।
0: बहनों कहते हैं कि जीवन की सबसे सुंदर पारसाना अनुभव है और आप और सबसे अच्छे शिक्षक हमारे अपने आस पास घटने वाली घटनाएं। बस इन्हीं अनुभवों से सीखते हुए, एक दूसरे के हाथ थामते हुए और जागरूकता की नई किरणें फैलाते हुए हम फिर एक बार आपके बीच उपस्थित हैं। और मैं हूँ आपकी प्यारी सखी वीणा और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। आप सभी का अपने प्रिय कार्यक्रम महिला जगत में स्नेह भरा स्वागत है। मैंने जीवन की भागदौड़ में हम सब अपने अपने दायित्व निभाते हैं, कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी समाज की बदलती तस्वीर। लेकिन उन सबके बीच यदि कुछ सबसे अधिक आवश्यक है तो वह है सही समय पर सही जानकारी, क्योंकि जागरूकता केवल जानकारी नहीं देती बल्कि सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी देती है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दीपक बनना आसान नहीं, पहले खुद जलना पड़ता है। ज्ञान बांटना सरल नहीं, पहले खुद सीखना पड़ता है। और जब हम सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है।
1: यही तो हमारी महिला जगत का उद्देश्य भी है। यहाँ हम केवल विषयों पर चर्चा नहीं करते बल्कि उन छोटी छोटी बातों को भी समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे घर परिवार, बच्चों, महिलाओं और पूरे समाज के जीवन को बेहतर बना सकती है। कभी स्वास्थ्य की बात, कभी शिक्षा की, कभी संस्कारों की, तो कभी कानून और अधिकारों की। हर विषय का उद्देश्य एक ही है, जागरूक समाज और सुरक्षित भविष्य।
0: सही कहा मीनाक्षी, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति केवल अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आइए आज भी कुछ नया जाने, कुछ नया समझे और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। और जब हम बात करें सकारात्मक सोच की, तो बहनों देखो हमारा जो बाहर का मौसम है वो भी बड़ा ही सकारात्मक हुआ हुआ है और प्यारे प्यारे बादल काले गंभीर घटाएं छाई हुई है और हमारे मन को खुश कर रही है।

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बहनों, बचपन जीवन की वह नींव है जिस पर भविष्य का पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं और जैसा वातावरण उन्हें मिलता है वैसी ही उनकी सोच और आदतें विकसित होती है।
3: बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, क्योंकि आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन्हें अच्छे संस्कार देना। उनमें सामाजिकता, सहयोग और साझा करने की भावना, मतलब कि शेयरिंग विकसित करना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को सफल बना सकता है लेकिन अच्छे संस्कार उसे सम्मान दिलाते हैं।
2: बिल्कुल वीणा। और क्या बहनों, क्या आपने देखा है कि छोटे बच्चे अपने खिलौने या चॉकलेट किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, है ना? ऐसे होता है ना।
4: बिल्कुल,
2: ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यदि बचपन से ही उन्हें शेयरिंग करना, मिलजुल कर खेलना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाया जाए तो यही आदत आगे चलकर उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाती है।
3: बिल्कुल, क्योंकि सामाजिकता की शुरुआत घर से होती है। यदि माता पिता और परिवार के सदस्य आपस में प्रेम, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने बहनों हमेशा सकारात्मक व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करते रहना चाहिए।
2: बिल्कुल, जैसे बच्चों को कभी कभी अपने खिलौने, किताबें या कलर्स अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करें। यदि वे ऐसा करें तो उनकी सराहना अवश्य करें, क्योंकि प्रशंसा बच्चों के अच्छे व्यवहार को और भी मजबूत बनाती है।
3: बिल्कुल सही बात कहा मीनाक्षी, क्योंकि जो बच्चे कभी कभार कहते हैं कि ये चीज मेरी है तो बस ये मेरी ही रहेगी, मैं अपने भाई भैया को कैसे दूं या मैं दीदी को कैसे दूं, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि बच्चों को ये शेयरिंग की जो छोटी छोटी आदतें हैं वो शुरू से ही डाल देनी चाहिए।
2: और बचपन से अगर पड़ जाए तो
3: बहुत अच्छा है। और बहनों, साथ ही बच्चों को समूह में खेलने में, टीम गतिविधियों में भाग लेने और परिवार के छोटे छोटे कामों में शामिल होने का भी अवसर दीजिए। इसमें उनमें सहयोग की, जिम्मेदारी की और दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता भी विकसित होती है।
2: और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को दूसरों की मदद करने की आदत भी सिखाएं। चाहे किसी भी मित्र की पढ़ाई में सहायता करना हो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना हो या किसी जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील होना, ये छोटी छोटी बातें उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती हैं।
3: और आज के डिजिटल दौर में तो बच्चे मोबाइल और टीवी पर अधिक समय बिताने लग गए हैं, तो ऐसे में परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना या कहानी सुनना, सामूहिक खेल खेलना और त्योहार मनाना, मिलजुल कर मनाना, ये सारी जो सामाजिकता है वो विकसित करने का एक अच्छे माध्यम बन गए हैं।
2: बिल्कुल, इन सब के माध्यम से बच्चे सामाजिकता सीखते हैं, साथ में रहना सीखते हैं। तो याद रखिए बहनों, बच्चों को हम जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह केवल अच्छी शिक्षा नहीं बल्कि अच्छे संस्कार है। साझा करने वाला बच्चा आगे चलकर संवेदनशील, आत्मविश्वासी और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनता है।
3: तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि अपने बच्चों को केवल आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि साथ लेकर चलना भी सिखाएंगे, क्योंकि जीवन की असली सफलता वही है जिसमें अपने साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखा जाए।
2: और भैया, आपकी खुशियों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: साथियों, जब भी आयकर शब्द सुनाई देता है तो अक्सर हमारे मन में यही विचार आता है कि यह विषय केवल बड़े व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों या फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स का है। लेकिन क्या आप जानती है कि आज हर कामकाजी महिला, उद्यमी या स्वरोजगार से जुड़ी बहन और यहाँ तक कि ऑनलाइन व्यवसाय करने वाली महिलाएं भी आयकर व्यवस्था से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, इसीलिए आयकर को समझना केवल टैक्स पेमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने आर्थिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का भी विषय है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय आयकर चेतना दिवस मनाया जाता है, ताकि नागरिकों में कर संबंधी जागरूकता बढ़े और वे सही समय पर सही जानकारी के साथ अपने दायित्वों का पालन कर सके।
0: बिल्कुल वीना, और बहनों, एक समय था जब महिलाओं को आयकर में कुछ विशेष रियायतें मिलती थी, लेकिन अब आयकर नियम में पुरुष और महिला करदाताओं के लिए अलग अलग मूल छूट नहीं है, यानी टैक्स की बुनियादी गणना दोनों के लिए समान नियमों के अनुसार ही की जाती है।
1: लेकिन बहनों, इसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के कर लाभ से वंचित हैं। यदि वे पात्र हों तो वे भी आयकर कानून में उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठा सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कुछ निवेशों पर मिलने वाली कटौती, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर उपलब्ध लाभ या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश और अन्य वैध कर बचत विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
0: और यदि कोई महिला नौकरी करती है, अपना व्यवसाय चलाती है, ऑनलाइन सामान बेचती है, फ्रीलांस कार्य करती है या फिर किराए से आय प्राप्त करती है, तो समय पर अपनी आय का सही लेखा जोखा रखना और आवश्यकता होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण है।
1: और आज डिजिटल सुविधाओं ने ये प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान बना दी है। वहीं दस्तावेजों के साथ समय पर रिटर्न भरना भविष्य में बैंक ऋण, वीजा आवेदन और अन्य वित्तीय कार्यों में भी मददगार साबित हो सकता है।
0: बहनों, यदि आयकर के नियम समझ में ना आए तो अनुमान लगाने के बजाय किसी योग्य सलाहकार या अधिकृत विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। सही जानकारी आपको अनावश्यक परेशानियों से बचा सकती है।
1: और आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही आत्मनिर्भर महिला होती है, और आत्मनिर्भरता केवल कमाने से नहीं बल्कि अपनी आय, बचत, अपने निवेश और कर संबंधी जानकारी रखने में भी आती है। तो बहनों, आइए राष्ट्रीय आयकर चेतना दिवस पर हम संकल्प लें कि आर्थिक मामलों में जागरूक बनेंगे और समय पर अपने दायित्व निभाएंगे और कर संबंधी सही जानकारी प्राप्त करेंगे।
0: बिल्कुल बहनों, तो जागरूक रहिए, आत्मनिर्भर बनिए और आर्थिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए।

0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ,
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to you.
0: कुछ दिन में नजरें इनकी इधर उधर।
1: I'm not listening to you.
0: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her.
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it.

0: कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम आपको सुनाएंगे एक वार्ता, और वार्ता का विषय है हिंदी लेखन में महिला साहित्यकारों का योगदान, और वार्ताकार है श्रीमती अन्नपूर्णा पंचार्य।
1: कहते हैं शब्दों में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। तलवार से आप किसी का शरीर घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द दिल और दिमाग दोनों को छू लेते हैं, बदल देते हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह हमारी पहचान और संस्कृति की आत्मा है। हिंदी साहित्य के विकास में जहां पुरुष रचनाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहीं महिला साहित्यकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रहा है। महिलाओं ने अपनी संवेदनशील दृष्टि, भावुकता, अनुभव और संघर्षों को

शब्दों में ढालकर हिंदी साहित्य की विधाओं को ही नहीं बल्कि समाज की सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। मीराबाई से लेकर सुधा मूर्ति तक यह सफर हमें बताता है कि जब नारी अपनी कलम उठाती है तो वह केवल कहानी नहीं लिखती, वह इतिहास बदल देती है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भी महिला कवियत्रियों ने अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभवों से काव्य को समृद्ध किया। मीराबाई, रानी रूपमती और कृष्णादासी जैसी कवियत्रियों ने भक्ति को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया और समाज में महिला की आवाज़ को स्थापित किया। आधुनिक हिंदी में महिला महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, कुमुदिनी, मृदुला गर्ग और ममता कालिया जैसी लेखिकाओं ने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण और निबंध के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। महिला साहित्यकारों ने न केवल प्रेम, करुणा और सौंदर्य पर लेखन किया बल्कि सामाजिक अन्याय, लैंगिक असमानता, महिला शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन और बदलते सामाजिक मूल्यों पर भी अपनी कलम चलाई। उन्होंने महिला के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा। आज की महिला साहित्यकार जैसे अनामिका, गीतांजलि श्री, चित्रा मुद्गल और मीनाक्षी स्वामीनाथन नए नए प्रयोग कर रही हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी लिख रही है। उनकी रचनाओं में स्त्री जीवन का यथार्थ, नारीवाद और मानवीय संवेदनाएं गहराई से झलकती है। महादेवी वर्मा, उनको हिंदी की मीरा, हिंदी कविता की मीरा कहा जाता है। वे छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा में से एकमात्र महिला कवियत्री थी। उनकी कविताओं में करुणा, संवेदना और प्रेम का अद्भुत मेल है। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। गद्य में उनकी स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार जैसे संस्मरणों में उन्होंने पशु पक्षियों और अपने जीवन के अनुभवों को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से लिखा। सामाजिक दृष्टिकोण से वे महिला शिक्षा और अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने इलाहाबाद में महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। महादेवी वर्मा ने साहित्य को केवल सौंदर्य और भावुकता ही नहीं दी बल्कि महिला चेतना और आत्मसम्मान की नई परिभाषा भी दी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अद्भुत कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी आज भी देशभक्ति की भावना जगाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों में महिला की वीरता, त्याग और साहस को उभारा। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहीं और जेल भी गई। उनकी रचनाएं प्रेरणा, राष्ट्रप्रेम और नारी शक्ति का अद्भुत संगम है। कृष्णा सोबती हिंदी की महान उपन्यासकार और कहानीकार थी। उनका लेखन ग्रामीण जीवन, स्त्री मन और मानवीय संबंधों की गहरी पड़ताल करता है। उनके प्रमुख उपन्यास जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी और दिलो दानिश हैं। उनकी भाषा में पंजाबी और उर्दू का सुंदर मेल मिलता है जिससे रचनाएं बेहद जीवंत और बोलचाल के करीब लगती है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले। उनका लेखन स्त्री के आत्मसम्मान और सामाजिक यथार्थ को बेबाकी से सामने लाता है। अमृता प्रीतम पंजाबी और हिंदी की मशहूर कवियत्री और लेखिका थीं। वे पिंजर जैसे उपन्यास और अज आँखों वारिस शानु जैसी भावपूर्ण कविता के लिए जानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में बंटवारी की पीड़ा, प्रेम और स्त्री की स्वतंत्रता का गहरा स्वर है। अमृता प्रीतम ने बेखौफ होकर अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। वे पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई। उनका साहित्य स्त्री की आत्मा की आवाज़ है
जिसमें दर्द भी है और मुक्ति की चाह भी।

0: सुधा मूर्ति जी एक प्रसिद्ध शिक्षिका, लोकप्रिय भारतीय लेखिका और समाज सेवी है। वे सरल, प्रेरणादायक और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास सरल भाषा में गहरे जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। वे बच्चों के लिए भी बहुत सी किताबें लिख चुकी हैं जिनको हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। इसी कारण से वे जन सामान्य में बहुचर्चित व लोकप्रिय हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषय प्रमुखता से आते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया है। उन्हें पद्मभूषण, पद्मश्री और कई साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति का लेखन यह साबित करता है कि साधारण कहानियां भी असाधारण जीवन सीख दे सकती है। इन सभी महिला साहित्यकारों ने अपने अपने समय में न केवल साहित्य को नई दिशा दी बल्कि समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा भी दी। महिला साहित्यकारों का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, यह समाज की आत्मा में गूंजता है। महादेवी वर्मा की करुणा, सुभद्रा कुमारी चौहान का साहस, कृष्णा सोबती की बेबाकी, अमृता प्रीतम का दर्द और सुधा मूर्ति की सादगी, ये सब मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि कलम अगर सच्चाई से चलाई जाए तो आने वाली पीढ़ियों का चरित्र गढ़ सकती है। जैसा कि किसी ने कहा है, जिस समाज में स्त्रियों की आवाज़ और कलम दोनों स्वतंत्र हो, वहाँ विचार भी पंख फैलाते हैं और सभ्यता नई ऊंचाइयाँ छूती है। धन्यवाद।
1: तो सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता हिंदी लेखन में महिला साहित्यकारों का योगदान। वार्ताकार थी श्रीमती अन्नपूर्णा पंजारिया।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: बहनों, बचपन ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है और इसकी खुशी में भविष्य की आशाएं बसती हैं और इसकी मुस्कान में पूरे समाज का विश्वास भी झलकता है। लेकिन इस मुस्कान की रक्षा केवल परिवार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। क्यों मीनाक्षी?
1: बिल्कुल वीणा। तो अब हम कार्यक्रम में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में जानकारी होना हर माता पिता, हर शिक्षक और समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। जी हाँ, हमारा विषय है पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट।
0: बिल्कुल बहनों, क्योंकि अक्सर हम बच्चों की पढ़ाई, उनके खान पान और भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी पढ़ाई और उनका खान पान। क्योंकि बहनों, इस जिस कानून के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उस कानून को जानना और समझना हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बेहद ही जरूरी विषय है।
1: बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में बनाया गया था ताकि 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा मिल सके। यह कानून लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है और बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
0: और इस कानून में एक विशेष बात यह भी है कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई अनुचित घटना होती है तो उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और साथ ही मामले की सुनवाई भी बच्चों के अनुकूल वातावरण में करने का प्रयास किया जाता है ताकि बच्चा मानसिक रूप से कम प्रभावित हो।
1: सही कहा वीणा, लेकिन कानून तभी प्रभावी होगा जब जागरूकता भी होगी। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार गुड टच और बैड टच की जानकारी देना, उन्हें ना कहना सिखाना और यह विश्वास दिलाना कि किसी भी परेशानी में वे अपने माता पिता, शिक्षक या फिर किसी भरोसेमंद बड़े से खुलकर बात कर सकते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है।
0: और बहनों, और तो और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बच्चों की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। यदि उनके व्यवहार में अचानक हमें कोई बदलाव दिखाई दे या वे डरने लगे, चुप रहने लगे या किसी व्यक्ति से मिलने से बचने लगे तो इसे सामान्य बात मानकर हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए।
1: और वीणा, आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल का दौर है, तो हमारी बहनों को ये भी जागरूक रहना चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक रहे, किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत, निजी जानकारी या फोटो साझा ना करें। यह भी उनकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और सच भी तो है बहनों कि बच्चों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास देकर सुरक्षित बनाया जा सकता है। जब परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर बच्चों का साथ देते हैं तभी उनका बचपन समुचित रूप से सुरक्षित बन सकता है।
1: तो आइए बहनों, आज हम सभी यह संकल्प लें कि हर बच्चे को ऐसा वातावरण देंगे जहां वे निडर होकर अपनी बात कह सके और सम्मान के साथ अपना बचपन जी सके।
0: बहनों, बच्चे केवल घर का भविष्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आशा है, तो आइए उनके अधिकारों की रक्षा करें, उनका विश्वास बने और उनके बचपन को सुरक्षित रखें।

0: बहनों जरा एक पल के लिए अपने घर की कल्पना कीजिए, यदि घर की गृहिणी बिना शिकायत के दिन रात सबका ध्यान रखती रहे और एक दिन अचानक थककर बैठ जाए तब पूरे घर की व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी एक ऐसा ही कर्मयोगी साथी है, लिवर। यह कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन जब यह थकने लगता है तो पूरा शरीर उसका असर महसूस करता है
1: और दिल की धड़कन सुनाई देती है, सांसों का चलना महसूस होता है, लेकिन लीवर वह चुपचाप अपना काम करता रहता है। भोजन को ऊर्जा में बदलना, शरीर से विषैले तत्वों का बाहर निकालना, पाचन में मदद करना और शरीर के सैकड़ों महत्वपूर्ण कार्यों को संभालना, ये सब लीवर की जिम्मेदारी है। लेकिन जब इसमें धीरे धीरे अतिरिक्त वसा जमा होने लगती है तब शुरू होती है फैटी लीवर की समस्या।
0: सबसे चिंता की बात यह है कि फैटी लीवर अक्सर बिना किसी संकेत के इस बढ़ता रहता है। कई महिलाओं को वर्षों तक पता नहीं चलता कि उनका लीवर अतिरिक्त दबाव में काम कर रहा है। जब तक थकान, पेट में भारीपन या जांच में समस्या सामने आती है तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: बहनों पहले ये माना जाता था कि फैटी लीवर केवल शराब पीने वालों को होता है, लेकिन आज बदलती जीवन शैली ने यह धारणा बदल दी है। लंबे समय तक बैठे रहना, बढ़ता वजन, जंक फूड, मीठे और अनियमित दिनचर्या, मधुमेह, थायराइड और तनाव, ये सभी कारण महिलाओं में फैटी लीवर की समस्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं।
0: अक्सर महिलाएं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है लेकिन खुद का नाश्ता छोड़ देती है, समय पर खाना नहीं खाती या जो बच जाए उसी से काम चला लेती है। लेकिन याद रखिए बहनों, शरीर भी उतनी ही देखभाल चाहता है जितनी हम अपने परिवार की करते हैं।
1: बिल्कुल, और यदि लगातार थकान बनी रहती हो, पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन महसूस हो, बिना कारण वजन बढ़ता जा रहा हो तो डॉक्टर की जाँच में लीवर एंजाइम बढ़ते हुए आए तो इसे मान्य कमजोरी समझकर ना टालें। समय पर जांच और सही सलाह भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
0: अच्छी बात यह है कि शुरुआती अवस्था में फैटी लिवर को काफी हद तक ठीक किया जा

0: सकता है। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलना, घर का संतुलित और ताजा भोजन खाना, मीठे पेय और तली भुनी चीजों से दूरी बनाना, पर्याप्त पानी पीना, वजन को नियंत्रित रखना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, यही सबसे प्रभावी दवा है इसकी।
1: और एक और बात, फिट रहने के लिए भूखा रहना कभी समाधान नहीं है। सही समय पर पौष्टिक भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना ही स्वस्थ लीवर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
0: तो बहनों, हम अक्सर दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, लेकिन लीवर की आवाज तब सुनते हैं जब वह बीमार हो जाता है। तो क्यों ना आज से ही उसकी खामोश मेहनत का सम्मान करें और उसे स्वस्थ रखने का संकल्प लें।
1: तो बहनों, याद रखिए, आप केवल अपने परिवार का सहारा नहीं है बल्कि उसकी सबसे मजबूत नींव है। इसलिए अपनी सेहत को कभी भी आखिरी प्राथमिकता मत बनाइए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपके अपना परिवार, आपकी मुस्कान भी स्वस्थ रहेगी। बहनों, आप भी अपने लीवर का ख्याल रखिए, क्योंकि वह बोलता नहीं लेकिन जीवन भर आपकी हर धड़कन और हर मुस्कान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगातार काम रहता है।

0: तो बहनों आपसे बातें करने के लिए तो बहुत सी है, लेकिन क्या करें कि घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही, तो अब जाने का समय हो गया है। तो दीजिए इजाजत आपकी सखी मीनाक्षी स्वर्णकार
1: और वीणा ऊजा को।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ही मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल को संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए

0: होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन

0: संशोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समीह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद

0: लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। प्रोग्राम में पहले सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म यस बॉस का ये गीत। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित का।

में धुन अल्तमश फरीदी और तुलसी कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म वजह तुम हो का ये गीत। गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत था मिथुन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए चित्रा की आवाज में फिल्म विया दार्जिलिंग का ये गीत।

लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म वीर जारा का ये गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के स्वर में फिल्म मोहब्बतें का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का।

आकाशवाणी बीकानेर के डोनावर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी

0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल

0: इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारु चैनल है। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं रिबू दमन सिंह और ओजस्वी।

0: नमस्कार दोस्तों, माइक्रोफोन के इस तरफ आप मुझे यानी रिपु धमन सिंह को सुन रहे हैं। अच्छा, एक आप जहां बैठे हैं जरा जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कहीं आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके लिए आपके सुरक्षा कवच को तोड़ रही है। क्या वही चीज जो असल में हम जिसे समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हमें कमजोर कर रही है। चौंक गए ना, घबराइए मत, आपके पास कोई जासूस या कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन एक ऐसा अदृश्य खतरा जरूर है जो दिन दहाड़े हमारी आंखों के सामने से हमारी जरूरी चीजें उड़ा ले जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती।
1: और

0: दोस्तों, सदृश खतरे का नाम है हमारी अपनी लापरवाही या फिर कहें जागरूकता की कमी। जी हाँ, बीकानेर की सुहानी शाम में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में मैं ओजस्वी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रिपोर्ट, तुमने तो शुरुआत में ही हमारे श्रोताओं के कान एकदम खड़े कर दिए।
1: देखो ओजस्वी, कान तो खड़े करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल कान सिर्फ तभी खड़े होते हैं जब मोबाइल की घंटी बजती है। असल जिंदगी में घंटियां जैसे हमें सुना ही देनी बंद हो गई है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिसे भारी भरकम शब्दों में हम कह सकते हैं सामान्य जागरूकता, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब आंखें भले ही बंद रहे, लेकिन दिमाग की बत्ती हमेशा चालू रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। पता है रिपू, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोगों को दुनिया भर की गॉसिप पता है, लेकिन अगर हमारी गली के नुक्कड़ पर भी कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें एम्बुलेंस का नंबर तक याद नहीं आता। जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जिसे कि रटकर या इम्तिहान पास कर याद किया जाए। ये तो अपनी जिंदगी, अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए एक तरह का अलार्म सिस्टम है।
1: अलार्म की बात तो क्या ही करे, जिसमें हमारे यहाँ के लोग सचेत तो बहुत है पर गलत दिशा में। इंटरनेट पर किसी को कोई मैसेज घुमा दिया कि रात को तुम्हारे हवा पर टैक्स लगने वाला है, और मैसेज को अगर आपने 20 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो आपका सांस लेना बंद हो जाएगा, तो लोग तुरंत बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं मैसेज फॉरवर्ड का अंधविश्वास।
0: अरे ये बीमारी तो बहुत ही तेजी से फैल रही है, बिना सोचे बिना परखे हर चमकती चीज को सोना मान लेना, और इसी का फायदा उठाते हैं ठग। श्रोताओं, क्या आपको पता है कि साइबर सेल बार बार ये चेतावनी देता है कि ऑनलाइन ठगी के ज्यादातर मामले सिर्फ और सिर्फ हमारे लालच और अज्ञानता के कारण होते हैं।
1: अरे हाँ, वो लॉटरी वाला मैसेज याद है, बधाई हो आपको 50 लाख की लॉटरी लगी है। मतलब भाई साहब, हमने कोई जिंदगी में लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, ना ही हमारे दूर के चाचा जी ने हमारे नाम कोई वसीयत कराई है, फिर भी हम मान लेते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन गए। और फिर ठग कहते हैं कि सर बस टैक्स भरने के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है, आप भेज दीजिए, और हम भोले भाले इंसान वो 20,000 रुपए के चक्कर में अपना अकाउंट खाली कर देते हैं।
0: अरे यही तो वो गड़बड़ है जिसकी तुमने शुरुआत में बात करी थी। दोस्तों, एक बात हमेशा अपनी गांठ बांध लीजिए, आपका OTP आपके घर की इकलौती तिजोरी है, तिजोरी की चाबी है। कोई भी बैंक अधिकारी, कोई भी सरकारी नुमाइंदा आपसे फोन पर पासवर्ड नहीं मांगता। अगर अनजान मैसेज से कोई लिंक आता है कि मुफ्त इनाम पाएं, तो समझ लीजिए वो इनाम नहीं, आपके बैंक बैलेंस के लिए बिछाया गया एक जाल है।
1: एकदम सही, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन होने। हाँ, तो नंदन का पूरा माथा ही घिचाता है। अच्छा ओजस्वी, एक और जगह है जहाँ हम बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, यानी हम लापरवाही करते हैं, बाजार में सामान खरीदते वक्त।
0: बिल्कुल, उसे कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। जागो ग्राहक जागो, ये विज्ञापन तो दोस्तों हम सभी ने देखा है, लेकिन असल जिंदगी में सब सो ही रहते हैं। हम दुकान पर जाते हैं, कोई भी पैकेट उठाते हैं और बिना उसकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट देखे घर पर ले आते हैं। क्या कभी आप सभी ये चेक करते हैं कि MRP जो पैकेट पर लिखी है दुकानदार कहीं उसे ज्यादा तो नहीं वसूल रहा?
1: अरे एक्सपायरी डेट तो बहुत दूर की बात है ओजस्वी, और MRP छोड़ो, लोग तो दुकानदार से ये तक नहीं पूछते कि अरे भैया जो सामान अगर खराब निकल गया तो वापस लोगे या नहीं। अगर दुकानदार 10 रुपए ज्यादा भी मांग लेता है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, 10 रुपए के लिए कौन माथा पच्ची करे। लेकिन तथ्य ये दोस्तों कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको ये अधिकार देता है कि आप तय कीमत से एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। आपकी यही 10-10 रुपए की हिचकिचाहट है ना, कालाबाजारी का बड़ा महल खड़ा कर देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर कोई भी दुकानदार आपको पक्का बिल देने से मना करता है दोस्तों, या आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये वो बुनियादी जानकारी है जो हर नागरिक की उंगलियों पर होनी चाहिए। अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता।
1: और पता है, हमारे पास तो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जैसा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपके मोहल्ले में सड़क या बारिश के समय सड़क बह जाती है, तो आपको पूरा हक है ये जानने का कि उस सड़क के निर्माण में कौन सा मसाला यूज किया गया था। पर हमारा क्या है, हम करते क्या है, बस चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और व्यवस्थाओं को कोसने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, ना कि सही दिशा में लगाते हैं।
0: क्योंकि रिपोदमन कोसना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर असल में हमें कुछ बदलना है तो खुद को अपडेट करना होगा। दोस्तों, हमें सवाल पूछने की हिम्मत जुटानी होगी। ये जागरूकता रातों रात तो आती नहीं है, ये तो एक आदत है जो हर दिन नया सीखने से बनती है।
1: एकदम सही कहा। और जो इंसान जागरूक है वो एक जलते हुए दीपक की तरह है दोस्तों, जो न सिर्फ अपना रास्ता रोशन करता है बल्कि अपने आसपास के लोगों के अंधेरे को भी हटाता है, उन्हें भटकने से बचाता है। तो बीकानेर वालों, स्मार्ट दुनिया में सच में स्मार्ट बनिए, अपनी आंखों के और कानों को हमेशा खुला रखिए, और अफवाहों के इस बाजार में अपनी अक्ल का सौदा बिल्कुल मत कीजिए।
0: बिल्कुल, अपने भीतर की चेतना को दोस्तों हमेशा जगाए रखिए।

0: क्योंकि जब तक आप खुद को सचेत नहीं रखेंगे कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता।
1: बात क्या बात कही है ओजस्वी, काफी गहरी बात कह दी, काफी पते की बात कह दी। अब दोस्तों बात जब चेतना की हो ही रही है तो क्यों ना हम अपने भीतर की चेतना को जगाएं और उसको थोड़ा संगीतमय तरीके से जगाएं, क्योंकि भागदौड़ भरी दुनिया में इतनी माथापच्ची के बाद तो संगीत जो हमारी जरूरत है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी हमारा क्विज टाइम सेगमेंट, जिसमें हम हर रोज आपसे 2 सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में मिलते हैं।
9: तो हमारा पहला सवाल है, सौर ऊर्जा के मामले में वैसे तो राजस्थान पूरे देश में झंडे गाड़ रहा है, पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और हमारा दूसरा सवाल है,
8: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस राज्य पक्षी को हाई टेंशन बिजली की तारों से बचाने और विलुप्त होने से रोकने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। सवाल आप फिर सुन लीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस राज्य पक्षी को हाई टेंशन बिजली की तारों से बचने और विलुप्त होने से रोकने के लिए विशेष समिति का गठन किया है।
9: तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक, जिनके जागने से वतन चैन की नींद सो पाता है, जिनके नाम से खौफ भी खौफ ज़दा हो जाता है, उनके अदम्य साहस को शब्दों में नहीं जज्बातों में पिरोया जाता है, मातृभूमि पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले उन असली नायकों को हमारा शत शत नमन। देश के हर नागरिक के दिल के धड़कन और सीने की दहाड़ को एक सुर में पिरोकर लाए हैं पद्मश्री कैलाश खेर। अपनी बुलंद और खनकती आवाज में सुनिए हमारी स्वाभिमान की गूंज, पेश है भारतीय सेना कैलाश खेर की आवाज में।
10: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
11: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की खूबसूरती पर एकदम फिदा हो गए हो? आपको लगा कि बस यही है जो मुझे सच्ची खुशी दे सकता है। क्या आप अब आप उसकी महक की तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि जिस पर आप इतना जिसे अपना सच्चा प्यार समझ रहे थे, असल में वह आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया है।
3: अरे अरे रिपू, ये गाने के खत्म होते ही तुम सीधा ये बेवफाई और बर्बादी की बातों पर क्यों आ गए? ये रेडियो का स्टूडियो है या फिर किसी आशिक का कमरा? आज अचानक ये सब कहां से शुरू कर दिया?
2: अरे नहीं नहीं, मेरा दिल एकदम साबुत है। मैं किसी इंसान की नहीं, बल्कि खूबसूरत और महकते हुए धोखे की बात कर रहा हूँ, जो आज के समय में हर चौराहे नुक्कड़ पर हमारा इंतजार करता रहता है। वो धोखा जो देखने में रंग बिरंगा है, जिसकी खुशबू से मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन चुपके चुपके वो हमारी रगों में जहर घोलता रहता है।
3: अच्छा अच्छा, अब मैं समझी तुम्हारा इशारा किस तरफ है। कहीं तुम उस जंक फूड और जंक फास्ट फूड की बात तो नहीं कर रहे जो कि आजकल हमारे दिल और पेट पर कब्जा करे हुए हैं?
2: बिल्कुल, अब तुम एकदम सही सोच रही हो जसवी। तुम खुद ही सोचो, सच कहूँ तो अपने हालत में बताऊं कि मैदान में पसीना बहाने के बाद, पावर लिफ्टिंग करने के बाद, वहां जब मैं 100-100 किलो वजन बड़ी आसानी से और पूरे जोश के साथ उठा लेता हूं और मेरा अनुशासन एकदम लोहे की तरह कड़क रहता है, लेकिन शाम को जब सड़क के किनारे से मैं जब गुजरता हूं तो वो कढ़ाई में छनते हुए मसालों की तेज खुशबू मेरे नाक में जाती और मेरा सारा का सारा अनुशासन मोम की तरह पिघल जाता है।
3: अरे रिपो, यही तो सबसे बड़ा जाल है। हमारी आंखें और हमारी जीभ दोनों मिलकर हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि तली भुनी मैदे से बनी और चीज मक्खन से लवा लब भरी हुई चीजें हमारे शरीर के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक हैं। फिर भी हम चुंबक की तरह इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं।
2: बिल्कुल, और जिस भी आजकल लोगों का फिटनेस रूटीन भी तो देखो, गजब का हो गया है। सुबह अलार्म लगाएंगे, उठेंगे, बढ़िया ट्रैक सूट पहनकर पार्क में 2 किलोमीटर तेज दौड़ या अच्छी खासी वॉक लगाएंगे, पूरा पसीना बहाएंगे और फिर वापस घर जाते

0: समय रास्ते में एक ठेले पर रुककर कहेंगे, अरे भैया वो प्लेट लगाना और हाँ तीखी वाली लाल चटनी एक्स्ट्रा डाल देना, मतलब जो कैलोरीज आपने सुबह सुबह रो रो कर जलाए और वो ब्याज समेत वापस अपने शरीर में जमा कर रहे हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं खुद को बेवकूफ बनाना। लोग आजकल चीट डे के नाम पर खुद ही को ठग रहे हैं। सोचते हैं कि हफ्ते के 6 दिन तो दाल रोटी खाई ही है, तो रविवार को बाहर का कचरा खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
0: कचरा, सही शब्द इस्तेमाल किया है तुमने। जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं ना, वो असल में हमारी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा होता है। उनमें से उसमें ना तो कोई विटामिन होता है, ना कोई प्रोटीन होता है और ना ही कोई काम का फाइबर होता है। बस मैदा और अनशन तेल भरा होता है और दुनिया भर का मसाला जो हमारे सीधे पेट में जाता है और हमारे सिस्टम को फ्यूज कर देता है।
1: और दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ रहा है? हम युवाओं पर। आजकल के युवाओं को देखो, जरा सी सीढ़ियां चढ़ते हैं और हाँफने लगते हैं। सारा दिन एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा आलस बना रहता है। अब भाई, जब आप अपनी गाड़ी के इंजन में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल और कचरा डालेंगे तो गाड़ी धुआं ही देगी ना, कोई फर्राटे से थोड़ी दौड़ेगी।
0: बात तो 100% की कही है। और मजे की बात देखो, जिस भी लोग अब अपने स्टैंड इसे अपना स्टैंडर्ड सिंबल कहने लगे। अगर कोई कह दे कि मैं तो सिर्फ घर का सादा खाना खाता हूँ, तो लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया। लेकिन जो इंसान डिब्बे में बंद महीनों पुराना जमा हुआ खाना खाकर खुद को मॉडर्न कह रहा है, ये उसे नहीं पता है कि वो मॉडर्न नहीं बल्कि भविष्य का मॉडर्न मरीज बन रहा है।
1: एकदम सही बात है तुम्हारी। असल में हमारी बीकानेर की परंपरा ही शुद्ध और ताजा खाना खाने की रही है, लेकिन हम उस गर्मा गर्म प्यार से बनी थाली को छोड़कर उस खाने के पीछे भाग रहे हैं जो ना तो हमें पोषण दे रहा है ना ही सुकून दे रहा है। श्रोताओं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप सन्यासी बन जाइए और अपनी जीभ पर ताला लगा लीजिए।
0: बिल्कुल, कभी कभार स्वाद बदलना भी अच्छी बात है, लेकिन जब वो कभी कभार हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाए तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। दोस्तों, अपने शरीर को एक मंदिर समझिए, उसे कूड़ेदान मत बनाइए। जो मर्जी आए डाल दिया। खाना चुनना भी एक तरह की जागरूकता है। अगर आप सचेत हैं तो आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही रास्ता बदल लेती है।
1: क्या बात कही है रिपू, ये तो हर बात, ये जो बात है इसको तो हर युवा को गांठ ही बांध लेनी चाहिए। ये जो हम सुन रहे हैं कि सेहत का रिमोट कंट्रोल है, ये हमेशा हमारे हाथ में ही रहना चाहिए। स्वाद के गुलाम मत बनिए दोस्तों।
0: नेकी और पूछपुर बात तो तुमने बड़ी ही कही है। अब जो तुम ये कह रही हो कि चटपटी और तीखी सी चीजें और इतनी कड़वी बातों के बीच, अब मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को अच्छा और बढ़िया संगीत सुनने का टाइम आ गया है, तो थोड़ी रूह का भी इलाज कर दिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: ओजस्वी, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारे फोन से लेकर हमारे पहनने वाले कपड़े तक सब कुछ अलग अलग देशों में घूम फिर कर हमारे पास पहुंचता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने रिपुदमन, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे कि हम ग्लोबल मार्केट कहते हैं।
0: लेकिन जरा सोचो, अगर दुनिया भर के देश अपनी मर्जी से सामान बेचने लगे, कोई भी किसी पर भी भारी भरकम टैक्स लगा दे या नियमों को लेकर आपस में लड़ने लगे, तब क्या होगा?
1: अरे तब तो पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी अव्यवस्था को और मनमानी को रोकने के लिए और दुनिया भर के देशों के बीच बिजनेस स्मूथली चलता रहे, इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है।
1: तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी सिस्टम, इसी व्यवस्था की बात करते हैं जिसे कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कहते हैं।
0: बिल्कुल ओजस्वी, ग्लोबल लेवल पर बिजनेस और ट्रेड के सारे रूल्स और रेगुलेशन तय करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्थान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में।
1: अच्छा, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसे तौर तरीके यही तय करती है।
0: हाँ, अगर दो देशों के बीच ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट यानी विवाद हो जाए तो WTO ही एक रेफरी के तरह बीच में आकर उसे सुलझाता है।
1: फिर तो ये बहुत जरूरी काम है। लेकिन रिपुदमन, क्या हमारे देश यानी इंडिया का भी इससे कोई कनेक्शन है? क्या भारत इसका हिस्सा है?
0: बिल्कुल, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। यानी जब से ये बना है भारत इसका हिस्सा रहा है। इसके जरिए भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को मजबूत रखता है और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाता है।
1: ये तो बहुत जरूरी बात है। वैसे आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिना ऐसे रूल्स रेगुलेशंस के दुनिया को चलाना नामुमकिन भी तो है।
0: सही कहा ओजस्वी, वैसे हमारे जो युवा साथी है ना, जो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो ये जानकारी, ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम सभी के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे करियर, हमारे स्टार्टअप्स और हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। पर WTO असल में काम कैसे करता है?
0: दोस्तों, अगर WTO के कामकाज पर आसान भाषा में हम समझना चाहे तो मुख्य तौर पर इसके तीन बड़े मुख्य काम हैं, जैसे कि ट्रेड को आसान बनाना, दुनिया भर में सामान और सेवाओं की आवाजाही बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना, और साथ ही में ये है कि टैरिफ कम करना यानी देशों के बीच लगने वाला कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को तार्किक रखना और सही करना, और तीसरा भेदभाव कम करना।
1: मतलब कि दोस्तों, कोई भी देश अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आप एक देश को कोई छूट दे रहे हैं तो वही छूट आप सभी सदस्यों को भी देनी चाहिए। खेल की तरह व्यापार में भी सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए, तभी तो छोटे देश भी बड़े देशों के साथ मुकाबले में टिक पाएंगे।
0: हाँ दोस्तों, पर आज WTO के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी है,
1: जैसे कि व्यापार युद्ध जिसे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, साथ साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, यानी कि एक तरफ आर्थिक विकास की दौड़ है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी।
0: इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए यह जरूरी है कि दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर बनाएं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो जानकारी हमने दी उससे आपको इसकी रूपरेखा थोड़ी

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाश

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: और जिस भी पिछली बातचीत में हमने WTO और ग्लोबल ट्रेड की बात तो कर ली, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब दो देशों के आपस में व्यापार होता है तो अक्सर हम अखबारों में एक बहुत सुर्खी में सुनते हैं एक शब्द, व्यापार घाटा।
2: बिल्कुल रिपुदमन, ये इकोनॉमी का बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है। आए दिन न्यूज में हमें सुनने को मिलता है कि किसी देश के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया है या फिर कम हो गया है।
1: तो क्यों ना आज हम इस पर और बात करें, बिल्कुल आसान भाषा में समझे कि आखिर ये व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट होता क्या है।
2: बिल्कुल, देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में कहें तो हर देश दुनिया के बाकी देशों से कुछ ना कुछ सामान खरीदता है यानी आयात करता है, और अपना कुछ ना कुछ सामान उन्हें बेचता है यानी निर्यात करता है।
1: और जब कोई दूसरा देश से जितना सामान खरीदता है उसकी कुल कीमत से उन देश का अपना सामान बेचने में वाली कमाई अगर ज्यादा हो जाए तो इसके बीच का जो अंतर होता है वो व्यापार घाटा कहलाता है।
2: सीधे सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों, जब कमाई कम और खर्चा ज्यादा हो तो समझो व्यापार घाटा हो गया।
1: एकदम सटीक उदाहरण दिया। अब मान लो कि भारत ने अमेरिका या किसी अन्य देश को साल में कुल $100 अरब का सामान मंगवाया भारत ने, लेकिन भारत ने उन्हें सिर्फ $70 अरब का सामान बेचा। अब जो बच गया बीच में $30 अरब का अंतर, वो हमारा व्यापार घाटा होगा।
2: बिल्कुल, अब देखो व्यापार घाटा तो समझ में आ गया, लेकिन हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या व्यापार घाटा होना हमेशा किसी देश के लिए नुकसानदायक या फिर बुरी बात ही है।
1: बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि घाटा है तो बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई विकासशील देश जैसे भारत अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए विदेश से बड़ी मशीनें, एडवांस टेक्नोलॉजी या कच्चा तेल आयात करता है तो शुरुआती दौर में व्यापार घाटा बढ़ सकता है, लेकिन आगे चलकर ये चीजें देश के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, ताकत देती है, और ये घाटा कम हो जाता है और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जिससे हमारा व्यापार सही होता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, यानी ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस चीज का आयात कर रहे हैं। अगर व्यापार से देश के विकास से जुड़ी चीजें आ रही हैं तो ये एक तरह का निवेश भी हो सकता है जो कि आगे चलकर हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा।
1: बिल्कुल सही, और यही वजह है कि सरकारें हमेशा मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए बातें करती रहती है, ताकि हम विदेश से अपनी निर्भरता को कम कर सकें और अपना सामान ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में बेच सकें।
2: रिपुदमन, यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, जैसे कि हम व्यक्तिगत जीवन में बचत और खर्च का हिसाब रखते हैं, वैसे क्या देशों के मामले में भी इसका उल्टा यानी ट्रेड सरप्लस भी होता है?
1: बिल्कुल होता है। जब कोई देश दूसरे देश से सामान ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और बदले में उसे सामान इम्पोर्ट कम करता है तो मुनाफा बचता ही है, जिसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं।
2: यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि हर देश की यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वो खुद बनाए, अपने देश के उद्योग को मजबूत करे ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसी आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया जैसी पहल, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: एकदम सही बात है तुम्हारी, और इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सब पर भी बहुत ध्यान देना होता है। आज का दौर दोस्तों सिर्फ पारंपरिक सामान बेचने का तो है नहीं, बल्कि हाईटेक प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज का भी है। भारत आज सर्विस सेक्टर में तो बहुत आगे है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं,
1: और यही वजह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट यानी PLI स्कीम की योजना लेकर आई है, ताकि देश में बड़ी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बढ़ावा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनने लगे, हम विदेशों से आयात पर निर्भरता हमारी कम हो और धीरे धीरे व्यापार घाटे पर काबू किया जा सके।
2: यानी कि रिपुदमन, इकोनॉमी सिर्फ किताबों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी खरीद फरोख्त और देश की तरक्की

0: अभी सीधा तौर पर जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, जब इन छोटी छोटी चीजों को हम समझते हैं आपस में जोड़कर, तो हमें समझ में आता है कि ग्लोबल मार्केट और ट्रेड पॉलिसी हमारे देश के भविष्य को कैसे आकार देती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की हमारी ये बातचीत से आपको ग्लोबल ट्रेड की थोड़ी बहुत गणित समझ में आई होगी, और इस गणित को अब थोड़ा साइड में रखते हैं और संगीत की दुनिया में चलते हैं।

0: ओजस्वी, आज सुबह जब मैं पार्क में टहलने गया तो मैंने चारों तरफ देखा कि प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें बिखरी हुई थी। नजारा बहुत ही निराशाजनक था और ये कचरा हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा गंदा कर रहा है।
1: सच मेरे पुदमन, ये आज के समय की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं।
0: और सबसे डरावनी बात है कि ये प्लास्टिक प्रकृति में जाकर नष्ट भी नहीं होता, सैकड़ों सालों तक मिट्टी या समुद्र में वैसा का वैसा ही बना रहता है।
1: एकदम सही बात है, और इसी वजह से इसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी और हमारे जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जमीन से समुद्र तक की गहराइयों तक इसका असर दिखता है।
0: समुद्र में तैरते हुए कचरा समुद्री जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये गंदगी तो फैलाता ही फैलाता है, साथ ही समुद्री जीवों का खाना तक बन जाता है।
1: और बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, वही माइक्रोप्लास्टिक हमारी फूड चेन के जरिए किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी आ रहा है, हमारी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: यह तो वाकई बहुत चिंता का विषय है, लेकिन सिर्फ अफसोस जताने से कुछ नहीं होगा, और जिसकी हमें इसके बचाव के तरीके भी के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
1: एकदम सही बात है, इस बदलाव की शुरुआत हमें सबसे पहले अपने घर से ही और अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही करनी होगी। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जैसे पन्नियां, थैली, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कप, उनकी जगह हमें जूट का या कागज का सामान यूज करना चाहिए।
1: और साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी इस दिशा में कदम उठाना बहुत जरूरी है, जैसे कि पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बजाय इको फ्रेंडली विकल्पों का अनिवार्य होना चाहिए।
0: सही कहा तुमने, कंपनियां अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का या बांस के या कागज की चीजें का इस्तेमाल करें तो समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: और इसके अलावा दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन भी बेहतर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को सही से रिसाइकिल कर पाए। कई देशों में तो आपने सुना होगा रिसाइकलिंग मशीन भी लगी है, जिससे कि प्लास्टिक बॉटल्स भी आसानी से साइकिल हो सकती हैं।
0: इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज को शहरों में लागू करना चाहिए, साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी इस अभियान के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जब बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तभी तो वो अपने घर पर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे।
0: तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लास्टिक प्रदूषण किसी एक का नहीं बल्कि हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे कि इसे खत्म करने का, जब तक ये खत्म नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने रिपुदमन, तो दोस्तों आइए आज से ही हम ये पक्का करें कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और अपनी इस खूबसूरत धरती को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे।
0: तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए हम पहले सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब हम आपको देते हैं। जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न किए थे, अब समय हो चुका है उनके जवाब देने का। तो पहला प्रश्न था हमारा
1: कि सौर ऊर्जा के मामले में आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान पूरे देश में झंडे गाड़ रहा है, पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क

0: राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है भड़ला, जो कि जोधपुर में है।
1: और कहा जाता है कि यहाँ अगर आप जाओगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ सोलर पैनल से दिखाई देंगे, जो लाखों घरों को रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के किस राज्य पक्षी को हाई टेंशन बिजली की तारों से बचाने और विलुप्त होने से रोकने के लिए विशेष समिति का गठन किया है? तो इसका जवाब है
0: घुड़ावण, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
1: और ये पक्षी राजस्थान की शान है, लेकिन दुनिया भर में इसकी संख्या 150 से भी कम बची है। प्राकृतिक बचाव हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं रोजगार जानकारी की तरफ, जो हम लेकर आते हैं नई नई रोजगार सूचनाएं।
0: तो दोस्तों आज की रोजगार सूचना है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से, जिन्होंने स्टेनोग्राफर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
1: विभाग का नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसकी पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जिसके अंदर पदों की संख्या है 163।
0: दोस्तों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए 12वीं पास, साथ में कंप्यूटर कोर्स जैसे कि RSCIT या ओ लेवल, और साथ ही शॉर्ट हैंड का ज्ञान। इसके लिए आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष।
1: और इसकी ये देखा जाएगा कि इसकी अंतिम तिथि रही है 10 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक। और आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य 750 और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है
0: hcraj.nic.in
1: पर आप लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पूर्व आप नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ लें, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन पढ़े आवेदन करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से आज हमने इतनी सारी ढेर सारी जानकारियां ली, कुछ प्रश्नों के सवालों के जवाब भी हमने जाने, नहीं हो जस्वी?
0: बिल्कुल, हमने बहुत सारी संस्थाओं के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि हमें अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है
1: और प्लास्टिक को किस तरीके से अपने पर्यावरण से दूर रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें, हमारे जीव जंतुओं को और हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है।
0: एकदम सही कहा तुमने। दोस्तों हम इसी के साथ देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज के इस प्रोग्राम में अपने दोस्त ओजस्वी
1: और मैं रिपु दमन आपसे विदा लेते हैं। पर उससे पहले जाते जाते हम आपको ये कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और इसे खुश मिजाजी से जिए। तो इसके साथ नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में आज शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। आज आप सुनेंगे फिल्म द ट्रेन के फिल्म गीत। समय याद रखिएगा शाम 6:05 से।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे, चर्चा विषय रहेगा मिश्रित खेती और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, साथ ही सुनेंगे कुसुम योजना के संदर्भ में। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता।

रहेगा। वर्षा ऋतु में पशुओं का उचित प्रबंधन एवं मौसमी रोगों से बचाव विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे और इनसे बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारीक।

सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 7:45 बजे से, फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 बजे से, और लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 बजे से।

फिल्म संगीत आप पुनः सुनेंगे रात्रि 9:15 बजे से। रात 10 बजे जयपुर से रिले होगा उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

0: ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस

0: बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
1: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों, अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, आपको सुनवाते हैं फिल्म द ट्रेन के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं फिल्म द ट्रेन

0: جمی.
1: आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन में. फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं. सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में.

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद ये वार्ता हुई। सरकार की ओर से सीजेपी की 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। सीजेपी की ओर से सौरभ और आशुतोष राका ने श्री नड्डा को अपनी मांगे बताई। इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और हाल ही में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की

0: चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर आज एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में सुधारों को संस्थागत रूप से देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि देश भी यही चाहता है और विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे देश के युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी, राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद के दोनों सदनों में आज पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर तथा अन्य विषयों पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोनों सदनों के कामकाज पर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष बिना किसी ठोस शर्त के चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 1264 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा 2026-2027 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संचय और जल भागीदारी पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचारों से राजस्थान जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल प्रबंधन और हर घर जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते और नर्मदा अवार्ड समझौते ने प्रदेश में जल सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुना का एमओए भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक

0: समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को इसके लिए जल्द परिपत्र जारी करने और नशा मुक्ति के लिए राज्य में महीने भर का विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में ड्रोन से नशीले पदार्थों को भेजे जाने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने राजकीय बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने विभिन्न वार्डों का भी परीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
1: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएचएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे का काम 23 जुलाई तक करीब 70% ही पूरा हो पाया है। इसे देखते हुए सर्वे की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बीच भीलवाड़ा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निकाय चुनावों से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है।
2: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनः सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डो के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डो के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता।
0: राज्य के पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट बताया है। साथ ही कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज पानी बरसा। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बरसात का दौर बना हुआ है। माही डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। भीलवाड़ा में भी रिमझिम बारिश हो रही है। पाली जिले के सादड़ी, देसूरी और नानबेड़ा सहित कई जगह पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला रुक रुक कर बना हुआ है। जवाई बांध सहित विभिन्न स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल सभी जिलों में येलो और जालौर तथा सिरोही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में हल्की भारी बारिश भी दर्ज की गई है। अभी भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन हल्की भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी दिन या दिन में गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई। बोर्ड की ओर से महिला और बाल विकास विभाग में 72 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई। सभी

0: निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका है नीलिमा दादिज। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर जिले में पिछले महीने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली, विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं जुड़ी और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए जानते हैं पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत अजमेर जिले के लगभग 1,65,000 किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पिछले दिनों केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली राज्यमार्ग के 4-लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का पिछले दिनों शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, परेड ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुष्कर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने काठोदा और पालड़ी गांवों में 2,28,00,000 रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें दोनों गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र और काठोदा की संपर्क सड़क शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन की सुविधा को मजबूती मिलेगी। राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले के मरीजों को आधुनिक सर्जरी की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में डॉ. आनंद और डॉ. दीपक कुमार ने नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष संस्थानों में 79वां स्थान मिला है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने 67वीं रैंक हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शिविरों में पट्टे, नामांतरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन मैदान में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगाभ्यास किया।

0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से चिकित्सा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाश

0: मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला में से कॉकरोच जनता पार्टी का नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया, संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में तीन केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हलका माए आवता दो दिन कछे कछे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल प्रदेश रा सगला जिला माय बरसात सारू चेतायो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत भाजपा रा कई नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली माय दूजा दौर री मीटिंग हुई। न्यारी न्यारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां रे खिलाफ नौजवानों री अगुवाई में करया जा रहा विरोध प्रदर्शन बीच बातचीत करी ची। सीजेपी रा नुमाइंदा सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान शांति सागे प्रदर्शन करने वाला रे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करण और हाल ही में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियां रो नुकसान झेल रहे विद्यार्थियों रा परिवारों ने मुआवजो देवन री शर्तां सरकार कानियों मान्या पाछे बातचीत री सहमति जताई। खबर नवी संसागे बातचीत करता था का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहो के सरकार काल प्रतिनिधि मंडल सागे एक और दौर री चर्चा करेला। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम जुड़ियो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ई मामला री सुनवाई करता थका कहो के हलफनामा में सुधारा ने संस्थागत रूप देवन सारू करी जे जतन री साफ जानकारी देवनी चाहिए। पीठ कहो के वा ई मामला में कड़ी निगरानी राखता थका लगातार इनरो जायजो लेवेला। ई मामला में आगली सुनवाई 27 जुलाई ने भेला। इबीजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षाओं में गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करड़ो बिल लावण में कोई मोड़ो नहीं करण माथे जोर दिनो है। संसद परिसर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण में कोई अड़चन नहीं आवनी चाहिए। वह कहो कि सरकार विद्यार्थियों रो भविष्य सुरक्षित रखण सारू कई खास जतन कर रही है। रिजिजू कहो कि अगर विपक्ष ई मुद्दा माथे संसदीय कार्रवाई में अड़चन पैदा करेला तो वाने देश रा नौजवाना री रीस रो सामो करनू पड़ेला।
2: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इबीचे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक उंजुड़िया मामला ने सुनवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला री सराहना कीनी है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वे कहो के अदालता माए मामला नी सुनवाई रोजीना फैला। संसद रा दोनों सदना माए आज लगातार पांचवा दिन हंगामो भयो। नीट पेपर लीक मामला और दूजा मुद्दा माथा चर्चा री मांग ने लेर विपक्ष रा सदस्यां रा शोर शराबा बीच लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई बार बार टालनी पड़ी। ई पाछे दोनों सदना री कार्रवाई सोमवार ताई टाल दी री जी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय

0: नवीसन सागे बातचीत करता थका कहो के राज्य सरकार रा लेवल माथे निकाय चुनाव करावन जुड़ो काम पूरो कर लियो चियो है।
1: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनः सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता।
0: मौसम रजरा उगनी और लंका उगनी हल्का माए भारी घनी भारी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग आवता दो दिन माए कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए बिरखा सारू चेतायो है। कोटा अजमेर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर संभाग माए बारिश चालते रहवन रो अनुमान है। लाडला 24 घंटा माए राजरा उगनी और अतुनी हल्का माए जोरदार पानी बरसियो। बांसवाड़ा माए आज ही सवारे उई बिरखा बह रही है और माही बंधा माए लगातार पानी आ रियो है। भीलवाड़ा माए छाटो छिटको बह रियो है। पाली जिला माए सादड़ी देसूरी और नानमेड़ा समेत कई ठोड़ा लाडला तीन दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। जिला रा जवाई बांध समेत न्यारा न्यारा बंधा और तलावा माए लगातार पानी आ रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काल राज्य रा कई जिला माए बारिश रो येलो और जालौर और सिरोही माए ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद माई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में तीन केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशारी लत न जड़ खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता दो दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल राज्य रा सगड़ा जिला माए बरसात सारू चेतायो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं राम स्वरूप विश्नोई और अनिल सिंह।

0: बाजरी हागे कहीं एटे ग्वार उजेर मोठ उजेर तिली भवे
1: तो देखो
0: खेती न कहीं मिश्रित खेती केवे
1: मिश्रित खेती एन भी कवे और जो कि आप मिश्रित खेती ने जो कि कवानी कभी एक बार आप उथली जटारी जो कि फसलों रो बीजान कर ले तो एक बार गहरी जटारो फसलों रो बीजान करा तो बा भी आप जो कि देखा कभी जका पोषक तत्व है वह सगली फसलों ने मिलता रहे और आप कम खर्चा रहे माई ज्यादा उत्पादन ले सका वे सरो अपना जका किसान भाई बहन है रामस्वरू भाई वे जागरूक है आज रे दिन और परंपरागत तरीका ने सागे सागे आधुनिक तकनीकारो भी समझ से बिठार खेती बाड़ी करे तो आप देखा कि भाई मिश्रित खेती में आप पशुपालन भी सागे कर सका पशुपालन सागे करा तो मेरे जो अवशेष बचे वो अपने खेती बाड़ी में काम आ जाए और खेती बाड़ी रो अवशेष बचे वो पशुपालन में काम आ जाए तो वैसे आप ज्यादा मुनाफो तो लेवा ही लेवा सागे आपने जो कह सका अवशेष बचेड़ो भी अपना सदुपयोग हो जाए
0: और सुनने वाला बात ने भी जाने है कि जब आप खेत बाओ तो खेत किनारे किनारे जे आप बागवानी कर लो बाग वाला कोई फल वाला पौधा लगा दिया तो बा भी मिश्रित खेती है कहने रो मतलब एक पंथर कई काज हुए नी या आपके गए नी आम गाम और गुटलियां का दाम जिया थे बात करेगी पशुधन राखे जने खाद भी उजेर दूध दूध ने मिल जाए डेयरी उद्योग भी फूटरो चालेर बाजार में आपने कोई जहर केमिकल या फिर रासायनिक खाद लानी को पड़े नी घर की चीज और पाखली भर खेत में नाखिया वहाँ बुरका दीर अब काल बेर जी मिलिया के हगले ही खाद नाकुड़ी है घरों ले गया पड़ोस में और मैं हो गयो चौखो जन बात तो कैंचो खाद जिसी जिसी बन जी
1: तो देखो बात तो थे साची कह रहे हो और जो की सामान तो थे जानू ही हो और वो जो की नई नई तकनीका काम लेवे नी बात तो देखने सारू है कभी अबार थे मिश्रित खेती की जो की बात बताई कभी जो की आप कह सका मेड़बंदी रे ऊपर जो की पेड़ पौधा लगा रही थे बात कही तो बन एक बात और न्यारी बताई कभी आप जो की आजकल देखा कभी अपना किसान भाई बहन है वह परंपरागत खेती रे सागे सागे आधुनिक खेती बाड़ी करे आप पहला भी बात करी है पर बताई कभी जो की आप देखा कभी झाड़ बोझो जो उगे है आपा कम पानी में जो पेड़ अपने आसानी से हटे उग सके बेर ऊपर जो की आप दूसरी कलम लगार बनसु उत्पादन ले लो
0: और बात
1: जो की मैं फल फूल ने आपने ज्यादा पानी देना पड़े वे मैं आपा कलम लगा देवा तो आपा कम पानी में यानी वर्षा आधारित खेती बाड़ी भी कर सका
0: और अनिल भाई आप भगत भगत माथे बाजे माथे ऐसा विशेषज्ञ हूँ भी अथाई करावा कि भाई आप परंपरागत खेती रहा गया आधुनिक खेती या जिका अपना प्रगतिशील किसान है बहु आप भेंटवार्ता करावा और एक बात हूँ धन कहनी भूल गयो
1: बताओ
0: कार्यक्रम में एक भेंटवार्ता भी हुई जके मैं वर्षा ऋतु रमाइन अपना जगह पशुधन है मारो उचित प्रबंधन किया करा बाबी हुण नहीं है कोई
1: और बे मैं तो देखो मारे हर बारी सुना के भाई संदीप भाई है
0: अच्छा बे अथाई
1: करया करे और ज्यादा से ज्यादा अपन ने फूटरी जकी जानकारी है वो दिलाया करे
0: अब इतनी बात कर ली पण एक बात भूल गयो क्यों कार्यक्रम ले छेकड़ ले तोरे माथा पण भजन होना पण आज मन ही लागे कि आपा ए दूजी अथाया करना हूँ पहले भगवान गजानंद ने मनावा और एक फूट रो सो भजन राजकुमारी मारूरी आवाज में होना
1: तो सुना सर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: देखो सर, कार्यक्रम की शुरुआत संदेशों पहले फूटरो सो भजन और भगवान गजानंद मेहर करे। आप कार्यक्रम रे छेकड़ ले तो रहते हैं मारे अथाई महागेरिया। अब जी पहले आप अनिल बात करें, आने की भी विबिरखा रो टेम है। आप खेती बाड़ी रहागे, पशु डांगरा भी रखा, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियां भी रखा। कई लोग आजकल खेती बाड़ी में ऊँट रो काम भी पुठो ले लाग गया। अब जैठे ट्रैक्टर खेती होती बट ऊँठा हो लागी, कई जोता काट नवे नहीं बीच में, जहाँ कोई रेवड़ हो छिदी माड़ी बाजरी ने उगे जन उठारो काम लेवा। तो आप पशुओं रे मायने बिरखा ऋतु रे मायने आप क्या उचित प्रबंधन करा इन सारू भेंट वार्ता आपने सुनावा सा। वार्ता रा वार्ताकार है डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे और बाऊ अथाई कर रिया है
3: संदीप कुमार पारिक।
2: पारिक कार्यक्रम री प्रस्तुति रेवंत कुमार लेघारी और संयोजन श्री अमित सिंह रा। सुनो सा,
4: वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है तो किसान का मन जो है वो बहुत प्रसन्नचित होता है, क्योंकि उसको अपने खेतों से अधिक उत्पादन

0: धन की उम्मीद होती है और साथ ही जो उसका पशुधन है उससे भी अधिक उत्पादन की इच्छा जो है वो जागृत होती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वर्षा ऋतु में हमें पशुपालन करते समय कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा पशु उत्पादन जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो वर्षा ऋतु में पशुओं का उचित प्रबंधन और मौसमी रोगों से उनका बचाव किस प्रकार से किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे जी को। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग कृषि महाविद्यालय स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो है वो हर तरह से सभी को अच्छी लगती है, लेकिन एक पशुपालक के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसको इस मौसम में अपने पशुधन का विशेष प्रबंधन करना पड़ता है, उसके लिए खास तैयारियां जो है वो करनी पड़ती हैं। तो वर्षा ऋतु में वैज्ञानिक पशु आवास प्रबंधन की अगर हम चर्चा करें तो इनमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले पशु आवास की बात करते हैं तो पशुशाला ऐसी होनी चाहिए जहां वर्षा का पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। फर्श की बात करें, फर्श पक्का, ऊंचा तथा हल्की ढलान वाले होना चाहिए ताकि पानी तुरंत बाहर निकल जाए। गीला फर्श केवल पशुओं को असुविधा ही नहीं देता बल्कि जीवाणुओं परजीवियों के बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करता है। पशुशाला में पर्याप्त रोशनी और हवा का आवागमन होना चाहिए। कई बार किसान पशुओं को वर्षा से बचाने के लिए चारों ओर तिरपाल लगा देते हैं जिससे हवा रुक जाती है और नमी बढ़ जाती है। यह स्थिति श्वसन रोगों और त्वचाओं के रोगों को बढ़ावा देती है, इसलिए वर्षा से सुरक्षा के साथ उचित वेंटिलेशन भी आवश्यक है। जहाँ पशु बैठते हैं वहाँ सूखा बिछावन जैसे भूसा, सूखी रेत या लकड़ी का बुरादा बिछाए। गीला बिछावन प्रतिदिन बदले, इससे थनों की स्वच्छता बनी रहती है और मस्टाइटिस का खतरा कम होता है। गोबर और मूत्र का प्रतिदिन उचित निस्तारण करें। सप्ताह में कम से कम एक बार पशुशाला की स्वीकृत कीटकनाशकों जैसे डेटॉल, फिनाइल या लाल दवा का यूज करके सफाई करें।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक हमने ये भी सुना है कि रोगों से बचाव के लिए जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर साहब ये जो जैव सुरक्षा है ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए।
1: जैसे हम जानते हैं आज पूरे विश्व में पशु रोगों की रोकथाम के लिए जैव सुरक्षा को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। जैव सुरक्षा का अर्थ है ऐसी सभी व्यवस्थाएं अपनाना जिससे रोग आपके पशुशाला में प्रवेश ही न कर सके। यदि आपने नया पशु खरीदा है तो उसे कम से कम 21 दिनों तक अलग रखें। इसी अवधि में उसका स्वास्थ्य परीक्षण, कृमिनाशन और आवश्यक टीकाकरण कराएं। यदि कोई पशु बीमार हो जाए तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। पशुशाला में आने वाले वाहनों, उपकरणों और बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही सीमित रखें। दुग्ध धोने के बर्तन, रस्सियां, उपकरण नियमित रूप से साफ रखें।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। हालांकि ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। एक बात डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताइए कि वर्षा ऋतु में संतुलित पोषण से संबंधित क्या बातें जो है वो एक आम पशुपालक को ध्यान में रखनी चाहिए।
1: प्रिय किसान भाइयों, बरसात में हरे चारे की उपलब्धता बढ़ जाती है, लेकिन केवल हरा चारा पर्याप्त नहीं होता। हरे चारे के साथ सूखा चारा और संतुलित दाना अवश्य दें। इससे जुगाली सामान्य रहती है और अम्लीयता की समस्या कम होती है। दुधारू पशुओं की उनकी दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार संतुलित आहार दें। प्रतिदिन खनिज मिश्रण और साधारण नमक अवश्य उपलब्ध कराएं। खनिज तत्वों की कमी से दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों की बात की जाए तो पानी और चारे में कुछ खनिजों की कमी या असंतुलन पाया जाता है, इसलिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार खनिज मिश्रण या नियमित उपयोग विशेष रूप से लाभदायक है। हरे चारे की हम बात करें तो हरे चारे बरसात में बाजरा, ज्वार, ग्वार, लोबिया तथा अन्य हरे चारी अन्य चारे चारे अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक कोमल या वर्षा के तुरंत बाद भीगा हुआ चारा अधिक मात्रा

0: में ना खिलाए, जैसे लंबा सूखा काल और वर्षा का न होना। ज्वार जैसी फसल की हम बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोसाइनिक एसिड तैयार होता है, इससे कई बार अपने पशुओं में दिक्कतें पैदा हो सकती है। हरे चारे के साथ सूखा चारा अवश्य मिलाए। यदि भविष्य के लिए चारा संरक्षित करना हो तो साइलेज और हे बनाना एक वैज्ञानिक और लाभदायक विकल्प है। इससे सूखे के समय में गुणवत्तायुक्त चारा उपलब्ध रहता है। यदि चारे में फफूंद दिखाई दे, बदबू आए या रंग बदल गया हो तो उसे पशुओं को न खिलाए। फफूंद से उत्पन्न माइकोटॉक्सिन पशुओं के एकृत प्रजनन क्षमता और दूध उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि जब नमी बढ़ती है तो इससे हमारे पशुओं का जो खान पान है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। एक चीज़ और भी डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये नमी युक्त वातावरण होता है तो प्रायः ये देखने में आता है कि जो कृमि प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, तो इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी आप हमारे पशुपालकों को भी दें कि वो इस समस्या से निजात कैसे पाएं, किन किन बातों का वो ध्यान रखें।
0: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। वर्षा ऋतु में नमी बढ़ने के कारण आंतरिक परजीवियों अर्थात कृमियों का संक्रमण तेजी से फैलता है। यदि पशुओं के शरीर में कृमियों की संख्या बढ़ जाती है तो पशु दुबले होने लगते हैं, चारा कम खाते हैं, दूध उत्पादन घट जाता है, बच्चों की वृद्धि रुक जाती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए पशुओं का नियमित कृमिनाशन पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। बछड़ों, मेमनों और बच्चों में कृमिनाशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। कृमिनाशन के बाद पशुओं के गोबर का उचित निस्तारण भी आवश्यक है, जिससे पुनः संक्रमण की संभावना कम होती है। किलनी, मक्खी और मच्छरों का नियंत्रण की बात की जाए तो इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। किलनी, मक्खियाँ और चीचड़ केवल पशुओं को परेशान ही नहीं करते बल्कि अनेक रोगों के वाहक भी होते हैं। पशुशाला के आसपास पानी जमा न होने दें, झाड़ियों और खरपतवार की नियमित सफाई करें, गोबर को लंबे समय तक पशुशाला के पास ना रखें। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार स्वीकृत एकेरिसाइड या कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें। जहां आवश्यक हो वहां फ्लाई ट्रैप तथा कीटरोधी उपाय अपनाएं। यह एकीकृत पेस्ट नियंत्रण अर्थात इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का भी महत्वपूर्ण भाग है।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनसे अक्सर पशुपालकों का सामना होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में कुछ खास किस्म के रोग भी होते हैं, संक्रामक रोग हैं ऐसे जो काफी देखने में आते हैं। उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए पशुपालकों को, इस पर आप थोड़ी जानकारी दें।
0: अब आइए उन रोगों की चर्चा करें जो इस मौसम में अधिक देखने को मिलते हैं। स्पेशली बात की जाए तो गलगोटू, जिसको हिमोर्जिक सेप्टिसीमिया बोला जाता है, यह वर्षा ऋतु का अत्यंत घातक जीवाणुजनित रोग है। पशु को तेज बुखार आता है, गले और गर्दन में सूजन हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और समय पर उपचार न मिलने पर अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है वर्षा ऋतु से पहले नियमित टीकाकरण करना। दूसरी बीमारी इसमें आती है ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लंगड़ा बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह रोग मुख्यतः युवा गोवंश में देखा जाता है। प्रभावित पशु में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द एवं सूजन तथा लंगड़ापन दिखाई देता है। जहाँ यह रोग पाया जाता है वहाँ समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बीमारी है खुरपका मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज। यह एक अत्यंत संक्रमित विषाणुजनित रोग है। इसमें मुंह में, जीभ और खुरों में छाले बन जाते हैं, पशु चारा कम खाता है, लार अधिक गिरती रहती है और दूध उत्पादन में घट आता है। रोगग्रस्त पशु को तुरंत अलग रखें और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण अवश्य कराएं। तो जैसे मैंने गलागोटू, ब्लैक क्वार्टर और खुरपका मुंहपका बीमारी के लिए एक ही टीका बाजार में अवेलेबल है, तो पशुपालक अपनी लागत कम करके इस टीके का उपयोग कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बीमारी, इसमें आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में यह रोग देश के अनेक राज्यों में देखा गया था, जिसको बोलते हैं लंपी स्किन डिसीज। इसमें पशु को बुखार आता है, शरीर पर कठोर गांठें बन जाती है तथा दूध उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग मुख्यतः मच्छरों, मक्खियों तथा अन्य रक्त चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलता है। इसलिए वाहक नियंत्रण और समय पर टीकाकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए

0: सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है टीकाकरण। प्रिय किसान भाइयों, यह सदैव याद रखें कि टीकाकरण बीमारी होने के बाद का उपचार नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले की सुरक्षा है। इसलिए अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करें, अपने सभी पशुओं का टीकाकरण रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और किसी भी टीके की अगली निर्धारित तिथि न भूलें। बीमार, अत्यधिक कमजोर या तेज बुखार वाले पशुओं में टीकाकरण केवल पशु चिकित्सक की सलाह से ही कराएं।
1: आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से बताया कि टीकाकरण का कितना महत्व है पशुपालन में। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये सब प्रयास जो हैं वो पशुपालक जो हैं वो करते भी हैं, लेकिन क्या दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कोई वैज्ञानिक उपाय भी है?
0: बिल्कुल, कई पशुपालकों की यह शिकायत रहती है कि वर्षा ऋतु में दूध उत्पादन घट जाता है। इसका मुख्य कारण रोग, तनाव की स्थिति, असंतुलित आहार तथा स्वच्छता की कमी है। यदि पशु को संतुलित पोषण, पर्याप्त स्वच्छ पानी, आरामदायक आवास, समय पर दुग्ध दोहन, नियमित टीकाकरण एवं कृमिनाशन उपलब्ध कराया जाए तो वर्षा ऋतु में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिए, दूध उत्पादन केवल नस्ल पर निर्भर नहीं करता बल्कि वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी समान रूप से निर्भर करता है।
1: और अंत में डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनका ध्यान रखकर पशुपालक हमेशा अपने दुग्ध व्यवसाय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
0: कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें प्रत्येक पशुपालक को हमेशा याद रखना चाहिए। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले सभी पशुओं को आवश्यक टीकाकरण कराएं। पशुशाला में कभी भी पानी जमा न होने दें। गीला बिछावन होगा तो तुरंत बदलें। स्वच्छ एवं ताज़ा पेयजल हर समय उपलब्ध रखें। संतुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण और नमक आवश्यक दें। फफूंद लगा या सड़ा हुआ चारा कभी न खिलाएं। पशुओं को नियमित कृमिनाशन कराएं। किलनी, मक्खी, मच्छरों का वैज्ञानिक नियंत्रण करें। खुरों की नियमित सफाई करें। आवश्यक होने पर फुटबाथ का उपयोग करें। दूध दूहते समय पूर्ण स्वच्छता रखें। नए खरीदे गए पशुओं को कुछ समय तक अलग रखें। बीमार पशुओं को तुरंत अलग करें और स्वयं दवा देने के बजाय पशु चिकित्सक से सलाह से दवा दें। पशुओं को स्वास्थ्य टीकाकरण और उपचार का रिकॉर्ड आवश्यक रखें। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान दें और उसी के अनुसार पशु प्रबंधन अवश्य करें।
1: तो वर्षा ऋतु में पशुओं का उचित प्रबंधन एवं मौसमी रोगों से उनका बचाव किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में जानकारी दे रहे थे पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे जी। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में पधारे और पशुपालक भाइयों और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सुनील भाई, अब बार आप कितने फुट रहे थे होने अपना साथी संदीप कुमार पारिक अथाई कर रहा है डॉक्टर कुलदीप प्रकाश शिंदे साहब हूँ वह बतावे है
3: कि कितनी चौकी जानकारी दी कुलदीप कुमार शिंदे साहब कि भाई कि आपने अपने पशुपालन मरीना में ध्यान रख देना।
2: हाँ देखो, एक बात तो नजर आई कि कार्यक्रम की प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा जी की ही और संयोजन श्री अमित सिंह रो। अब बात आ है कि अगलों मोटी बात आ है कि जिया टाबरा ने गुरुवार दिन अपा नर्स बहन जी कने टीका खातर ले जावा बियाई आपने पशुआ रे टीकाकरण रो कार्ड भी हमारे रखुड़ है अनिल भाई का के अलमारी में राखर भूल गया।
3: देखो संभाल रखनो भी चीज है और अपना संभाल
2: टाइम लगाना है टीका
3: घणी इसी बीमारी हो रामस्वरूप भाई जो कि अपा अबार अपन वार्ता रे माध्यम से भी बताए हो कि भी अपा टाइम सर वो जो को टीकाकरण करा लेवानी
2: तो भी अपना तो गाइन देखो
3: बहुत फायदा
2: कोई काम है नहीं भगत माथे हुए नहीं मेरी बेड़ा चौकी हुआ करे।
3: तो जानकारी आपने इतनी चौकी दी तो आपा भी धन्यवाद रे रूप में कोई गीतर लो सुनाओ
2: जचगी के।
3: तो देखो
2: जचगी जन लो सुनो कालू राम प्रजापति गौड़ो फूट रो शोक राजस्थानी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
4: राम स्वरूप भाई, देख

0: बारा पांच संदेशा सुने और संदेशा सो पहला मीठो सो लोक गीत भी सुने और आप जी बातें करा अपनी खेती बाड़ी री पशु पालन री तो मेरे सागे सागे आधुनिक तकनीक है उन्हें भी बात आप करनी जरूरी है क्योंकि आपनो किसान है वो आजकल कई क्षेत्र में पिछड़ो को नहीं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहना है और जी आप व्यवसाय री बात कर लें खेती बाड़ी री कर लें नौकरी पेशा री कर लें आपनो किसान है वह टब्बर है चाहे वो छोरो छोरी हो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे
1: लारे कठी को ज्ञान में आगू और खेती में नई नई तकनीक में आगू और बार तो देखो साधन गणा ही है ज्ञान रह तो
0: साधन साधन री बात करी बेसो जुड़ेरी जकी आपा आबार योजना री बात करा कुसुम योजना क्योंकि सगला साधन है नी ऊर्जा सु चल है और ऊर्जा जकी है नी आपने जकी यहां बात करा मोटे तौर पे तो जी हां कोयले सु आपा ऊर्जा प्राप्त करा या फिर आपा पानी सु जकी बिजली प्राप्त करा और आपा जकी ईंधन है पेट्रोल है
1: डीजल
0: है केरोसिन है जो तेल है
1: सिलेंडर वाली गैस
0: सिलेंडर वाली गैस है तो इन सु आपा जको ऊर्जा प्राप्त करा या जकी सीमित है आने टाइम खत्म भी हो जाएगी तो अपा इसी ऊर्जा से जुड़ानी जो कि अपने सुबह उठते ही मिलनी शुरू हो जाए और संजती यहाँ ही चलती रहे साल भर यहाँ चलती रहे
1: सृष्टि रही जित रही बैठो
0: बारे सी तो बहन अपा संचित करा और बहन काम लेवा वह सु जुड़ी जो कि कुसुम योजना है और सरकार भी है अपा ने बढ़ावा देने का
1: सब्सिडी दे सब्सिडी दे ट्रेनिंग देवे फूटरी बात
0: तो ऐसू आप जुड़ा और इसी ऊर्जा ने काम में लेवा क्योंकि आपने खेती बाड़ी में भी देखा कि जो काम धंधो है वो ऊर्जा सुई हुआ है मशीनरी सु और आजकल देखा कभी घर घर साधन भी खड़े है तो जबकि आप दो पहिया वाहन री बात करा तो वो भी आजकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं
1: देखो अभी अनिल भाई अड़बाण में नहीं तो ट्रैक्टर आए कल्टी आओ एरो आओ तो ही आओ चाहे अगले चाल ही तो डीजल ट्रैक्टर
0: अब बार डीजल री जगह जकी बैटरिया जो चार्ज हो गया उन्हें सु चालना शुरू हो गए और आपने देखा कभी बड़ी बड़ी जकी ढाणिया है छोटी ढाणिया है उन्हें में भी सोलर प्लेट लगा आप जका सगला उपकरण है टेलीविजन है मधानी है आपने जका दैनिक जरूरत है सगला काम बना सूच कर सका तो आप योजना से जुड़ा और ए में जकी आप बड़े क्षेत्र पे भी आप जकी सौर ऊर्जा लगा सका और छोटे क्षेत्र पे भी लगा सका तो सगला भाई बंधु ए योजना री जानकारी खुद भी काम में लेवा और आप एक दूसरे से बतलावन कर उन्हें भी जका जानकारी सु वंचित है उन्हें भी बता आगे बढ़ावा
1: फूटरी बात है और अभी तो फूटरी अतई करी जन मन लागे पाछे गीतर तो होना था एक
0: तो गीतर लो तो देखो रामसु भाई थे सुना और जका किसान भाई बहन नहीं सुनाई सो कौन सा जकी एक बात और है थे जको गीतर लो लाओ नहीं वैसे सुन अपना जगह किसान भाई बहन की थकान भी दूर हो जाए
1: अच्छा मैं तो यह सुना हो कि बाजे मत है बापा तो थई करा पण खटको करी नी सुधीर भाई अड्डी के गए बेगा साग सुना दा मन तो थे मौको दोगे
0: तो देखो सुधीर भाई
1: दौड़न को मत तो वह ढलान मिल जाए जन सही जगह सुधीर भाई तो खटको कर रही है लो हूणो

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए

0: मानवता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी की कार्य आपकी आवाज जन जन तक।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: तो सा संदेश हम पहले आप फूटर सो गीतर लो होने और अब देखो कार्यक्रम रे छेकड़े तौरे माथा आ गया और बात हुरुमाई करी कि भाई आपनों गांव फूटर होनो से जर बार अनिल भाई बिरखा रो टेम है
5: और बिरखा भी बैठे ही आवाज जटे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा हो
4: मन ठा होते आ बात के हो।
5: तो देखो आपने तो पेड़ पौधा हुआ नहीं जब आपन देखा कि आपने खेत रे माई खेजड़ी हुआ तो बेरे माई नीचे आपन देखा अनाज है नहीं जो को सगले खेत सुनियारो हुआ
4: फूटरी बात
5: के क्योंकि खेजड़ी जो को आपने कैस कहा कि भाई खेत रे खतर आपने पर्यावरण रे खतर एक वरदान है।
4: अब देखो अनिल भाई बात कितनी करानी तो कम है कि आ जांटी समीर खोखा कौन दे हांगरी को देनी पर थे बतायो कि फिर नीचे खेती गणी हुए लकड़ी गणी काम की जो को घर में कोई मांगली काम हुए जन बिर लूम लावार पशु डांगरा नीचे आराम बैठे छिया गणी है कम पानी में पन पे इर वास्ते जिन कल्प वृक्ष के वे ज्यादा में ज्यादा लगावना है लागूड़िया ने बचावना है। अब और तो कहीं क्यों कार्यक्रम भगत पूरा हो रही है
5: बात और सगले भाई सो यो निवेदन करा कि जकी खिचड़ियां लाग रही है उन्हें बचावा और उन्हें रक्षा करा और ज्यादा से ज्यादा
4: पेड़ लगावा
5: बिरखा टाइम शुरू आसी और बार जकी सुई री घड़ी है नी घड़ी री सुई है वा भी अपन इशारो कर रही है सीख लेन रो
4: तो चरना राम राम
5: राम राम सर।

ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुनी है भक्ति रचना। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ही ये भक्ति रचना।

0: अनूप जलोटा के स्वर में गाई इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होगा संसद समीक्षा।
1: आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक है यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले सदन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा

स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राम जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। क्योंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता

100 MBBS विद्यार्थियों की है को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। आप सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री

0: नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये धुलामारू चैनल है। रात्रि के 8:15 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था बंदिश। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इमरान के लिखे गीत को अभी आपने सुना, संगीतबद्ध किया बप्पी लाहिड़ी ने, आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, फिल्म का नाम था तकदीर का बादशाह। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अब्दुल गनी की आवाज में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोक संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फतेह कुमारी व्यास की आवाज में ये लोकगीत।

लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत शिवम मिश्रा और साथियों की आवाज में।

0: सीमा मिश्रा और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक

0: फीडबैक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति

0: मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम त्रिशूल।

फिल्म पाकीज़ा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम पुकार।

ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था नया दौर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। यशुदास और हेमलता की आवाज़ में, फिल्म का नाम चित्तचोर।

फिल्म प्रेम प्रभात में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम वो कौन थी।

सुन संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारो चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दुलारी।

अब्दुल रफी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होगा उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान।

मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद नजर आने लगती है। बारिश हमें अल्लाह की नेमतों की कदर करना भी सिखाती है। अगर इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में नेमतों को भूल जाता है, लेकिन जब कभी बारिश कम होती है या सूखा पड़ता है, तब एहसास होता है कि पानी की हर बूंद कितनी कीमती है। इसलिए हमें पानी को कभी जाया नहीं करना चाहिए। समय बारिश का मौसम हमें सफाई का भी पैगाम देता है। अगर हम नालियों में कूड़ा डालेंगे, सड़कों को गंदा रखेंगे और अपने माहौल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो यही बारिश परेशानी का सबब भी बन सकती है। इसलिए हर इंसान का फर्ज है कि वह अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखे। बारिश इंसान को सब्र और शुक्र दोनों का सबक देती है। जब बारिश होती है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपनी रहमत हम पर नाजिल फरमाई। और अगर कभी ज्यादा बारिश की वजह से मुश्किलात पैदा हो, तब सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह से आसानी की दुआ करनी चाहिए। सामईन, बारिश के मौसम में दुआ कबूल होने की उम्मीद भी बयां की गई है। इसलिए हमें चाहिए कि इस वक्त अपने लिए, अपने वालदेन, अपने मुल्क और पूरी उम्मत के लिए खैर व बरकत की दुआ करें। उर्दू अदब में भी बारिश का मौसम बहुत अहमियत रखता है। शायरों ने बारिश को मोहब्बत, उम्मीद और जिंदगी की नई शुरुआत की अलामत करार दिया है। कुछ अशार मुलायजा फरमाइए, जिसमें से एक अशार की शुरुआत मैंने शुरुआत में की थी कि बरसती बूंदों ने पैगाम रहमत सुना दिया, सूखी हुई जमीन को फिर से हंसा दिया। बादल की हर अदा में कुदरत का राज है, हर बूंद में छुपा हुआ रहमत का साज है। बरखा की बूंद बूंद में अल्लाह की अता है, जो शुक्र से झुक जाए वही कामयाब हुआ है। सामईन, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बारिश की नेमत का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे? जी हाँ, पेड़ लगाना, पानी बचाना और माहौल को साफ रखना हम सबका फर्ज है। अगर आज हम पानी की कदर करेंगे तो आने वाली नस्लें भी इस नेमत से फायदा उठा सकेंगी। आइए हम सब ये अहद करें कि अल्लाह की हर नेमत की कदर करेंगे, पानी को जाया नहीं करेंगे, अपने माहौल को पाक साफ रखेंगे और हर हाल में परवरदिगार का शुक्र अदा करेंगे। इस मौजू के आखिर में कि बारिश की हर बूंद हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूखी जमीन फिर से जिंदा हो जाती है, उसी तरह उम्मीद और दुआ से इंसान की जिंदगी भी रोशन हो जाती है। सामईन, तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क में हमेशा अमन, बरकत और खुशहाली कायम रहे। जी हाँ सामईन, तो ये हमारा पहला सेगमेंट अदबनामा, जिसमें हमने बात की शायरी की, बारिश की। उम्मीद है आपको ये अदबनामा पसंद आया होगा। सामईन, तो आइए रहमत की इसी उम्मीद के साथ आप सभी के लिए मौसिकी का एक खूबसूरत नजराना लुत्फ उठाइए। मौसिकी के इस खूबसूरत नजराने का कहीं जाएगा मत, लौट के

तरफ है तस्वीर हिंदुस्तान की और ले लहाते खेत थे तकदीर हिंदुस्तान की ले लहाते खेत थे

कैसे हमने बेच दी जागीर हिंदुस्तान की।

बढ़ रही है इसलिए जब हम वतन जाने लगे अहले वतन को छोड़ कर जब हम वतन जाने लगे

ये जागीर हिंदुस्तान की जान सराने वतन की अजमतें तो देख

तेरे ऐजिल्दगी तस्लीम करते हैं। और शेर पेश करता हूं, मिसाले आईना रखते

चलो हम आम उल्फत की फिर अब तालीम करते हैं चलो हम आम उल्फत

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गुलिस्ता कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से किया गया। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। रात्रि के 10:30 अब से कुछ ही देर में होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोता मिलीजिए, सुनिए पंडित कुमार बोस का तबला वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में तबला वादन पंडित कुमार बोस से आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से सुन रहे हैं।

தகுதி தாக்கிறது.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार बोस का तबला वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो

0: देश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the